सैयद कादरी ने फिल्म आवारापन 2 से। सुनते रहिए वे जुनून ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: चले जी, माशू का गाना खत्म हुआ और आपकी आवाज में बहुत सारी बातें सुनने का मन कर रहा है मेरा, इसीलिए जितनी जल्दी सके मैसेज करिए। हम अब कॉन्टेस्ट खेलने जा रहे हैं शाम सुबह के 7:04 के करीब।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: चलिए जी, इसी के साथ अब मस्त मौला गौरव आपको ले चलता है उस कॉन्टेस्ट की तरफ जिसे कहते ही है एक छोटी सी बात, जहाँ पर मैं आपके कानों में डालता हूँ एक आवाज और आपको पकड़नी होती है ये किसकी है आवाज।
2: उम्र में और एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है। जस्ट बिकॉज यू ओल्ड डजंट मीन योर एक्सपीरियंस, यू नो। हम अक्सर उसमें गलती कर जाते, अच्छा ये आदमी ये 50 साल के, इसको ज्यादा नहीं, 50 साल का इडियट है वो, 50 साल से कुछ नहीं किया लाइफ, उसको क्या पता है।
0: हाँ जी, कुछ याद आ रहा है, ये आवाज आपने बहुत सुनी है, दोस्ती की मिसाल है ये बंदा, और फिर से सुन लीजिए।
2: उम्र में और एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है। जस्ट बिकॉज यू ओल्ड डजंट मीन योर एक्सपीरियंस, यू नो। हम अक्सर उसमें गलती कर जाते, अच्छा ये आदमी ये 50 साल के, इसको ज्यादा नहीं, 50 साल का इडियट है वो, 50 साल से कुछ नहीं किया लाइफ, उसको क्या पता है।
0: अब आपको पता है कि किसके पास है, तो 5000196 पर जल्दी जल्दी मैसेज भेजना शुरू कीजिए अपनी वॉइस नोट में। हालांकि जितनी देर में मैं पूछ भाई नहीं, उतनी देर में जवाब आ गए। दे दनादन अर्श भाई, थैंक यू सो मच। वेल, मैं लेकिन इंतजार कर रहा हूँ वॉइस नोट वालों का जवाब सबको सुनाने का, ताकि भाई कतर को पता लगे कि लोग कितने तेज हैं यहाँ कान के, इनको आवाज सुनाओ ये पकड़ लेते हैं कि हमारा ये तो फला बंदा है।
2: उम्र में और एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है। जस्ट बिकॉज यू ओल्ड डजंट मीन योर एक्सपीरियंस, यू नो। हम अक्सर उसमें गलती कर जाते, अच्छा ये आदमी ये 50 साल के, इसको ज्यादा नहीं, 50 साल का इडियट है वो, 50 साल से कुछ नहीं किया लाइफ, उसको क्या पता है।
0: फिल्मों में दोस्ती की मिसाल की फिल्मों में काम किया है, यही हिंट है आपका। 5000196 पर मस्त मौला गौरव आपके जवाब का इंतजार कर रहा है आपकी आवाज में। कतर सुनेगा, प्लीज भेजना है अपनी आवाज में, ताकि कतर सुन पाए आपका जवाब। मिर्ची इट्स हॉट जनाब।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Mirci, burka.
1: Hello.
2: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, हेलो।
2: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 3rd K 35/14A 1st floor। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है। आप मेरे को क्यों बता रहे हो, ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
2: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
1: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
2: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
1: यार
2: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो, मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं,
2: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
4: गोइंग होम, मेक इट रिवॉर्डिंग विद कल्याण ज्वेलर्स।
5: एंजॉय 0% मेकिंग चार्जेस ऑन सिलेक्ट ऑर्नामेंट्स। विजिट कल्याण ज्वेलर्स टुडे, कंडीशंस अप्लाई।
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
9: कम है के?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: दो दिल मिल रहे हैं और आपको ऐसे गाने मिल रहे हैं मिर्ची पे झूम झूम के। लेकिन इस घंटे आपको मिलता है मेरे साथ सुबह सवेरे कॉन्टेस्ट। गुड मॉर्निंग जी, और आज के कॉन्टेस्ट की आवाज कुछ यूं है।
1: उम्र में और एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है। जस्ट बिकॉज यू ओल्ड डजंट मीन योर एक्सपीरियंस। यू नो, हम अक्सर उसमें गलती कर जाते हैं, अच्छा ये आदमी ये 50 साल के, इसको ज्यादा नहीं, 50 साल का इडियट है वो, 50 साल से कुछ नहीं किया इसने लाइफ, उसको क्या पता है।
0: 5000196 पर मस्तपोला गौरव आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है ये किसकी आवाज है जो मैं इस वक्त सुना रहा हूँ।
1: उम्र में और एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है। जस्ट बिकॉज यू ओल्ड डजंट मीन योर एक्सपीरियंस। यू नो, हम अक्सर उसमें गलती कर जाते हैं, अच्छा ये आदमी ये 50 साल के, इसको ज्यादा नहीं, 50 साल का इडियट है वो, 50 साल से कुछ नहीं किया इसने लाइफ, उसको क्या पता है।
0: 5000196 पर मैं इतना बता दूं कि अभी तक जितने सारे लोगों ने भेजा है सबको दिल से धन्यवाद, और सबके जवाब बिल्कुल सही है। सुनाऊंगा जवाब, सबके सुनाऊंगा, अगर अभी सुना दूंगा तो आपको तो पता ही लग जाएगा क्योंकि 100% सही जवाब आए हैं। एंड आपको एक आखिरी मौका मिल रहा है कि आप भी अपना ट्राई मान लो। 5000196 पर वॉइस नोट में अपना जवाब भेजो कि गौरव ये जो आप सुना रहे हैं वो फला की आवाज है।
1: उम्र में और एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है। जस्ट बिकॉज यू ओल्ड डजंट मीन योर एक्सपीरियंस। यू नो, हम अक्सर उसमें गलती कर जाते हैं, अच्छा ये आदमी ये 50 साल के, इसको
0: 5000196 बस फॉलो करो। इंतजार कर रहा है आपके जवाब का, जितनी जल्दी हो सके भेजिए। वॉइस नोट में लिख के भेजेंगे तो भी नाम पढ़ दूंगा, लेकिन वॉइस नोट भेजेंगे तो खतरा आपका जवाब सुन लेगा, और अगला गाना तो आप सुनेंगे कहेंगे गौरव थैंक यू।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: एच आदि श्रीवास्तव म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग. क्या खूबसूरत गाना सुनाया किसने. मुरा पिया मुंह से बोलता ही, लेकिन मैं हमेशा आके यहाँ बोलने लगता हूँ, आपसे बातें करता हूँ और इस घंटे खेलता हूँ. और पहचान कौन में एक आवाज आज मैंने सुनाई है, आपको बतानी है वो आवाज किसकी है.
1: उम्र में और एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है. जस्ट बिकॉज यू ओल्ड डजंट मीन योर एक्सपीरियंस. यू नो हम अक्सर उसमें गलती करते हैं कि अच्छा ये आदमी ये 50 साल के, इसको ज्यादा नहीं, 50 साल का इडियट है वो, 50 साल से कुछ नहीं किया इसने लाइफ, उसको क्या पता है.
0: तो मैंने पूछा ये किसकी आवाज है, जवाब आ गए.
2: गुड मॉर्निंग सर, मैं रामदीन से यादव, ये एक्टर का नाम है अरशद वारसी है जी. अरशद वारसी, मैं रामदीन से यादव बोल रहा हूँ जी.
0: यादव जी ओके. हेलो,
3: दिस इज अरशद वारसी.
0: ओके,
4: हेलो, गुड मॉर्निंग कतर, दिस इज अरशद वारसी देयर.
0: ओके,
5: गुड मॉर्निंग गौरव. ये आवाज था अरशद वारसी का, अमरनाथ.
6: गौरव भाई गुड मॉर्निंग. गौरव भाई ये जो आवाज थी अरशद वासी की थी, मेरा तो फेवरेट है, जबरदस्त बंदा है आपके वैसे.
7: हाय गौरव, गुड मॉर्निंग, इट्स कमल विद यू.
0: कमल भाई,
7: ये आवाज अरशद वारसी का.
3: हेलो, सलाम अलैकुम.
0: वालेकुम सलाम,
3: दिस इज नदीम. ये अरशद वारसी की आवाज है.
8: गुड मॉर्निंग, ये अरशद वारसी की आवाज है.
9: गुड मॉर्निंग गौरव, ये आवाज है सरकेच अरशद वारसी की.
0: हाय
10: गुड मॉर्निंग गौरव, आवाज अरशद वारसी की थी. दिस इज उमेर.
0: ओके, एंड इसके अलावा थैंक यू ना चाहेंगे जिक्र से. हां जी, हमारे हरपाल संधु भाई का, जिनका संदेश आ गया, गुड मॉर्निंग गौरव जी, होप यू हैव अ फैंटास्टिक एंड प्रोडक्टिव डे. सर आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं आज के दिन की, थैंक यू सो मच. इसके अलावा चार्ली अरशद वारसी लिखकर भेज रहे हैं. सुमन ने लिखा है अरशद वारसी, संजू भाई ने लिखा है अरशद वारसी, ये लो. इसके अलावा यू हैव अ गुड डे ब्रो, सॉरी वॉइस नोट नॉट पॉसिबल, आई एम ड्राइविंग. दिस इज अर्श. अर्श थैंक यू यार, आपने जवाब दिया वही बहुत है यार, ड्राइव करो, ड्राइव सेफ, ड्राइव स्लो. एंड इन सब के बीच बस वालों को और यही कहेगा, इतने लोगों ने 100% सही जवाब देकर ये तो बता दिया है कि सर्किट और मुन्ना भाई की जोड़ी की आवाज़ आज भी उनके कानों में गूंज रही है. जल्दी अपनी अगली सीरीज लाओ यार, मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
6: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
5: योर स्पेशल ऑफर?
6: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
5: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
6: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
5: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
7: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
8: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
9: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मास्टर सलीम और उनके आवाज की ये जो रीच है ना वो अलग लेवल है यार। अब आप सोचिए, आपको एक ऐसा गाना चाहिए जो आपको स्लो फील भी दे और साथ में एनर्जी से भरपूर कर दे, तो वो मास्टर सलीम की ही आवाज हो सकती है इस गाने के साथ। इन सब के बीच मस्त मौला गौरव आ गया जनाब, और इतना ही कहना चाहता हूँ कि कतारा में 30 ऐसा आर्टवर्क लगा है, 30 ऐसा आर्टवर्क जो कतर के 3 मिलियन लोगों को जरूर देखने जाना चाहिए। #974974 The most trending local news of the day. Yes, Katara Cultural Village में एक खास चीज शुरू हुई है in collaboration with Sea Shore Group, और ये exhibition सैयद साद अल-दोसारी, Deputy Director General of Katara and Director of Human Resource, उनके अलावा कुछ और बड़े लोगों की देखरेख में शुरू हुआ है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में हम कितनी बार कितनी सारी चीजें डिस्कार्ड कर देते हैं ना, जैसे थ्रो अवे में कर दिया, वेस्ट में, ट्रैश में फेंक देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि इन्हीं चीजों को, इन्हीं वेस्ट को अगर हम यूज कर कल के लिए, फ्यूचर के लिए कोई ऐसा मास्टरवर्क बना सके जो जनरेशंस को इंस्पायर करे, तो वही यहां आपको देखने को मिलेगी। एग्जीबिशन का नाम है एनवायरमेंट एंड लाइफ कतारा कल्चरल विलेज में, एंड 30 से भी ज्यादा यहां पर आर्टवर्क लगे जो क्रिएट किए हैं आर्टिस्ट जवाहर अलतिया, नोरा राधवी एंड थाई आर्टिस्ट ओयू। यस, ये सब ने बनाया है रिसाइकल्ड एंड रिक्लेम मटेरियल से इतने खूबसूरत आर्टवर्क जिसको देखकर आप कहेंगे पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बन ही सकता है। लेकिन उन्होंने बनाकर कर दिखाया, पेंटिंग, स्कल्पचर, इंस्टॉलेशंस, जो हमें एक बात तो याद दिलाते कि भैया नेचर की ब्यूटी को अगर मेंटेन रखना है बायोडाइवर्सिटी के साथ, तो हमें कम से कम वेस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा रीयूज करना है, प्लास्टिक मटेरियल को रिसाइकिल में यूज करना है, ताकि वेस्ट को अगर हम रिसोर्स की तरह देखना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ अच्छा, बेहतर, मोर ग्रीनर और ब्यूटीफुल छोड़कर जाएंगे। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जब इस तरह के आर्ट एग्जीबिशन लगते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ 30 तो आर्टवर्क लगाए, क्या ही देखने जाना है। ये समझिए कि वो 30 आने वाली 300 जनरेशंस को कितना कुछ सिखा कर जाएगा। एंड आई ऑलवेज से रिफ्यूज, पहले तो अगर ना हो सके तो प्लास्टिक यूज ही मत कीजिए, और फिर रीयूज अगर ले लिया है तो बार बार यूज कीजिए, एंड जितना हो सके रिसाइकिल करिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जनरेशन से सिखाया जा रहा है, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करना है तो आज इसको अपनाना है। 89.6 मिर्ची 1 कतारा केस एग्जीबिशन में जरूर जाना है। इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। दर्द

0: Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
2: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए?
3: अलार्म लगा है। ओह गॉड, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
2: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
1: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
7: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
0: यार एक बात मुझे समझाती नहीं है, कोई भी मूवी डाउनलोड करो प्रिंट हमेशा खराब निकलती है, क्या करूँ?
1: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है, तो तू प्रिंटर बदल देना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

0: संजू राठौड़ के आवाज में सारी गाना आ गया और लग रही कमाल भी कह दिया।
1: मस्त मौला गौरव।
0: लेकिन कौन से देश कमाल कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में धमाल कर कॉमनवेल्थ में अपनी जगह बनाएंगे, वो तो हम बता रहे हैं। 8:04 होने को आ रहे हैं।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वेल, हम आपको बता दें कि लगातार अब सबकी नजरें रहेंगी उस खेल पर जिसका नाम ही है कॉमनवेल्थ गेम्स। एंड स्कॉटलैंड में ये शुरू हो चुका है ग्लासगो में, जहां पर 23rd से ओपनिंग सेरेमनी हुई है। और तब से लेकर अब तक की बात करें, मेडल टैली पे नंबर 1 की पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, वहीं इंडिया इज ऑन नंबर 10th विथ 1 only ब्रॉन्ज। हाँ जी, इसके अलावा हमसे ऊपर इंग्लैंड, नाइजीरिया, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा, न्यूजीलैंड, वेल्स जैसे छोटे छोटे देश भी हैं। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहते हैं कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा ऊपर जाने वाला है, कौन सा देश नीचे आने वाला है, ये क्यों हमें बताया लगाना है, क्योंकि रेसलिंग एंड बैडमिंटन को कॉमनवेल्थ गेम्स से इस बार बाहर कर दिया गया है। तैयार हो जाइए, हो सकता है कोई नया चैंपियन भी आपको देखने को मिल जाए। एंड फिलहाल के लिए मस्त मौला गौरव इस ओपनिंग सेरेमनी से आगे बढ़ते हुए उसकी बात करेगा जो कमाल कर रही है अपनी इंडियन टीम। हाँ जी, फाइनली वर्ल्ड कप के बाद हमने पहला कोई सीरीज जीता है। भले ही जिम्बाब्वे जैसी टीम थी तो क्या हुआ, टीम तो टीम होती है, हमें तो आयरलैंड ने हराया, हम जिम्बाब्वे में किसी को कम थोड़े समझेंगे। हैं जी, फिलहाल इंडियन टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली है। हालांकि आज तीसरा मैच भी होना है, दोपहर 2 बजे करीब आप वो मैच भी देख पाएंगे एंड फिलहाल के मस्मोर गौरव को सुन पाएंगे। और मैं कह रहा हूं, अगर किसी और का इस्तीफा मांगना है तो वह है गौतम गंभीर, ये खुद से रिजाइन कर दे तो अच्छा, वरना BCCI के आगे भी कुछ लोगों को जाना चाहिए। 89.6

0: Energy.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La viva la burka.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पे जान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसे कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100-0813।
6: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
8: दोनों मिलेगा।
4: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन,
9: 89.6
10: FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हाँ जी, सोनू निगम की आवाज में दिल पे गिरा रे बिजुरिया, लेकिन हम तो गाना सुनाते हैं भैया। हाँ जी, और सुबह सवेरे जब आपके साथ है तो पहले तो गुडी गुड मॉर्निंग। और वन चैंपियनशिप अब हमारे कतर में होने जा रही है। यस, ये बैक टू बैक होगी हमारे कतर में 3 सालों के लिए। यस, क्योंकि वन चैंपियनशिप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने विजिट कतर के साथ किया है एक लैंडमार्क डील, जहां पर दोनों ही अब एक साथ सेलिब्रेट करेंगे मार्शल आर्ट इवेंट्स को। एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम मार्च 2027 टू नेक्स्ट 3 ईयर्स। वेल, ये बड़ी बात है। एंड वन, ये जो हम कह रहे हैं ना आपको वन चैंपियनशिप, ये दुनिया की वन ऑफ दी मोस्ट फेमस मार्शल आर्ट चैंपियनशिप है और पूरी दुनिया इसको जानती है। हाँ जी, 166 इन 2024, 171 इन 2025, और अब आगे इवेंट में एक बार फिर से कतर का यहां जुड़ जाना। मुआई थाई, किक बॉक्सिंग, सबमिशन ग्रैपलिंग, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहते हैं कि अब अगले 3 सालों तक ये वन चैंपियनशिप हमारे कतर में होगी और हमारे अंदर का जोश जुनून जज्बा जगाएगी कि किस तरह से आपको हमेशा फिट तंदुरुस्त रहकर अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जब भी बात स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आती है, मैं रोज प्लान करता हूं कि कल से मुझे शुरू करना है, बस वो कल कब आएगा इसी का इंतजार है। लेकिन आप बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, आगे बढ़िए और अपने आप को सशक्त बनाइए ताकि आप मजबूत रहें और घुटनों और कंधों में दर्द ना हो। मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: तुम हुआ होश है, क्या गाना था यार। और हिमेश भाई यहाँ से अलग ही माहौल बना ले गए।
1: मस्त मौला 36
0: नॉनस्टॉप हिट दिए थे इस बंदे ने इस फिल्म के बाद। यह आशिक बनाए आपने के बाद कमाल किया था, लेकिन फिलहाल धमाल कर रहा है रेट, जिसमें मैं सोच रहा हूँ काश पैसे होते तो घर भेज देते। राइट नाउ की बात करें, एक कतरियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26.45 हैं, 26.45 रुपए भारतीय मुद्रा में। वही 1 कतरियाल के बदले श्रीलंका रुपीज 92.14। अगर हम वाहिद कतरियाल के बदले पाकिस्तानी रुपीज की बात करें जनाब, 76.33 पाकिस्तान रुपीज जनाब। इसके बाद तपाई को नेपाली रुपीज का रेट छो दाजो 42.27 का भल छो रेटर बानी हाजी 42.27 का रेट छो हजूर घर भेजन ला एकदम सही टाइम छो। अगर इसके बाद हम बंधु बांग्लादेशी टाका बात करके दादा बाड़ी जी के पैसा भेजो हाजी एकटा कतरियाल के बदले 33.97 तो 33.97 इट बांग्लादेशी रेट चिलो। अगर आप टाका घर भेजना है तो बेस्ट टाइम छो। इन सब के बीच विशाल मिश्रा एकदम एक नंबर सिंगर है। अगला गाना में हम कैसा हुआ बताएगा आपको मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: में स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गोइंग होम, मेक इट रिवॉर्डिंग विद कल्याण ज्वेलर्स।
6: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
7: यार बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
8: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
7: क्यों, वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
8: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
7: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
8: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार्स, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
7: ओह, मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस।
8: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
7: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग। लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
9: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
10: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
11: बहुत कुछ होगा।
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6
14: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: ऑन वॉइस के साहब, सुबह सवेरे ऐसे गाने सुनकर तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। बॉय गॉड की कसम, लेकिन अब ये सुनेंगे आप तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने कह दिया मैरीटाइम नेविगेशन एक्टिविटीज अब कतर में फुल फ्लो में शुरू हो जाएगी।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: इधर लाइए कान अपना पास में, लाइए वॉल्यूम बढ़ाइए और ये बात सुन लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने अनाउंस किया है कि कतर में जो समुद्र में आप मैरीटाइम नेविगेशन एक्टिविटीज करते हैं, अपने वेसल्स को लेकर, शिप्स को लेकर, अपनी फास्ट बोट को लेकर, अपने जेट स्की को लेकर, वो फाइनली अब फिर से ऑन हो गया है फ्रॉम संडे जुलाई 26 आज से। एंड मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ने यह भी अर्ज किया है कि आप मैरीटाइम रेगुलेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल फॉलो करेंगे, अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स लेकर ही पानी में सेलिंग करेंगे, ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे और सिक्योरिटी जो है वो भी मेंटेन रहे। कैसे सुन रहे हैं आप कान लगा के? ऐसे जैसे घर में चार जेट स्की, दो बड़ी स्पीड बोट रखी हुए हैं, ये उनके लिए है जो वाकई में जिंदगी में एडवेंचर को वैल्यू देते हैं। कार भले ही छोटी खरीद ले, लेकिन एक जेट स्की जरूर रखते हैं, ये उनके लिए है, क्योंकि छई छप्पा छई छप्पा के छई पानी में करने के लिए आपको ये महंगे वेसल्स खरीदने ही पड़ते हैं, और जो खरीद रहे हैं उनके लिए था। हाँ जी, हम और आप वही समुंदर में पैर डाल के खुश हो जाएंगे। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्मोला गौरव आपके साथ। अभी भी सुबह सवेरे एक करक बनती है, मैंने अभी पी, एनर्जी का लेवल बदल जाता है। यही हमारे कतर की ब्यूटी ऑफ करक 89.6 मिर्ची 1। चलो फलाफल आ रहा है, उसको भी खा के आएंगे। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi, it's hot.
1: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
2: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
3: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
1: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
4: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
7: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more. All at one place. Call 5572-7387 today.
8: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
9: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
10: बार बार।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
11: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: emergency helpline?
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूं?
1: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: क्या गाना लिखे भैया है, फिलहाल कंपोज किया म्यूजिक से विशाल मिश्रा ने और लिरिसिस्ट खुद हैं राजशेखर साहब। लेकिन मैं ये सोचा था कि सोचिए फिल्म का नाम टॉक्सिक और भाई ने गाना भी बनाया तबाही। 9:05 हुए सुबह के।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: लेकिन कैसा लगता है बताइए, नेगेटिविटी पे भी इतना जबरदस्त तरीके से गा रहा भाई, तबाही तबाही। जिसकी जिंदगी में आती वही जानता है इसका कितना भयंकर परिणाम होता है। लेकिन सोचिए इस गाने को अपनी कलम से जिस व्यक्ति ने सजाया है, राजशेखर साहब, वही है जो लिखा है ऐसे क्यों पहले भी मैं, जाने दे क्यूटी क्यूटी मरहम पापा मेरी जान। ऐसा लिखने वाला तबाही लिख रहा है। देखिए भाई, कलम से कुछ भी लिखा जा सकता है और ये इन भाई साहब ने भी बताया। इन सब के बीच बस बोला गौरव ने आपके कानों तक बहुत सारी चीज पहुंचाई है, लेकिन कल को लिखने वाले और देश की सुरक्षा वाले पुलिस के जवानों को कुछ खास मिला है। यस, हम बता दें पुलिस अकेडमी ने सेलिब्रेट किया है ग्रेजुएशन ऑफ 3rd and 4th ग्रुप ऑफ टुमारोज पुलिस प्रोग्राम, जिसका 7th एडिशन है। जबरदस्त ट्रेनिंग के बाद 3rd and 4th ग्रुप ऑफ 7th एडिशन ऑफ पुलिस टुमारो प्रोग्राम, जो कि समर 2026 में लगभग 400 स्टूडेंट्स के साथ पूरा हुआ है। एंड ये बता रहा है कि कतर आने वाले टाइम में भी सेफ हाथों में है। इन सब ने जबरदस्त ट्रेनिंग ली और इस दौरान बकायदा बहुत सारे लोग मौजूद थे जब ये पूरा सेरेमनी हो रहा था, सेलिब्रेशन। यस, इस दौरान वहां पर थे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के टेक्निकल स्पेशलाइज्ड अफेयर हिज एक्सीलेंसी मेजर जनरल अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल सुवेदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ पुलिस एकेडमी मेजर जनरल अब्दुल रहमान माजिद अल सुलेती एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पुलिस एकेडमी डायरेक्टर ऑफ पुलिस कॉलेज कर्नल डॉक्टर फहद सईद अल सुबई। Well, हमें याद है कि कितना बड़ा एक सपना होता था कितने सारे मेरे दोस्तों का कि मैं यार पुलिस की वर्दी पहनूंगा, मैं पुलिस के जाऊंगा उसमें और मैं दरोगा भर्ती फॉर्म भरूंगा। कुल मिलाकर वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है जहां पर हम देखते हैं कि डेडिकेशन के साथ सारे स्किल और नॉलेज को लेकर अपने मुल्क को कैसे महफूज बनाना है, कैसे सुरक्षा के साथ उसको आगे लेकर जाना है, ये यहाँ की पुलिस में भी देखने को मिलता है, जो हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार है। सिर्फ एक नंबर डायल करना होता है 89.6 मिर्ची 1 पर। मस्त मौला गौरव गानों से आपकी मदद कर रहा, अगला गाना बंजारी की आवाज में।

Yeah.

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La vieta la burka. Mirci, burka.
1: Hello? Hello?
2: Sir, very good evening. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात है
2: सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे ही कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: गोइंग होम, मेक इट रिवॉर्डिंग विद कल्याण ज्वेलर्स.
5: एंजॉय 0% मेकिंग चार्जेस ऑन सेलेक्ट ऑर्नामेंट्स. विजिट कल्याण ज्वेलर्स टुडे. कंडीशन अप्लाई.
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: जमाना लगता है सर, अच्छी बॉडी बनाने में भी जमाना लगता है। बॉडी फिजिक अच्छी मेंटेन रखने के लिए जमाना लगता है, डिसिप्लिन उससे ज्यादा लगता है। और मैं ये कहूंगा अगर शायद उसकी शुरुआत यहां से कर दे तो बात बन जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ एंड इस्लामिक अफेयर्स ने लॉन्च किया है द फर्स्ट एडिशन ऑफ समर सैटरडे स्पोर्ट्स फोरम। एक मंथ लॉन्ग इनिशिएटिव चलाया जा रहा है हमारे और आपके लिए, जो कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी को हमें स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारे सोशल बॉन्ड को एक साथ स्ट्रेंथ करने के लिए, एंड कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री के एम्प्लॉयज जो हैं, उनकी फैमिलीज जो हैं, उनका वेलबींग स्ट्रांग हो सके, उस पर अब ये इंतजाम किया जा रहा है। यस, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री पब्लिक रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। जुलाई 25 से इसकी शुरुआत हो सकी है एंड अगस्त 22 तक ये चलने वाला है। यस, मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज और उनके बच्चों के लिए जो कि 15 साल से ऊपर हैं, मिनिस्ट्री समर एक्टिविटी ये प्रोग्राम चला रही है विद मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ एंड इस्लामिक अफेयर्स। ये बेसिकली नाम दिया गया है इसको कूल ऑफ विद योर कलीग्स। ये सुबह 7 बजे से 10 बजे तक चलता है अल अंडालूस एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में। हालांकि यहां पर मिनिस्ट्रीज की फैमिली वही लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं अगर इनकी शुरुआत हुई है तो हम भी इसी तरह से शुरुआत करें, शायद अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाएं, रोज जाएं, एक छोटा 30 मिनट्स, नहीं हो पा रहा 30 मिनट्स 20 मिनट्स कर लो, नहीं हो रहा 20 मिनट्स 10 मिनट्स कर लो, लेकिन जरूर वॉक करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो। ये हमारी और आपकी फिटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। वरना मैं तो खा पी के यही सोचता हूं कि चलो कल से शुरू कर देंगे, लेकिन अब ये बात मुझे मोटिवेट कर रही है, तो इससे पहले मैं और मोटा वेट हो जाऊं, मैं मोटिवेट होकर आज से वॉक करूंगा। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: यार बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
6: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
5: क्यों, वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
6: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
5: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
6: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
5: ओह, मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस।
6: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
5: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
7: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
8: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
9: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
10: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

टोची रैना की आवाज में गल मिठी मिठी बोल, अमित त्रिवेदी का म्यूजिक। लेकिन कतर में अगर मिठे मिठे ड्रिंक्स फ्री पैकेज हैं तो उनके लिए बोल लगने वाला है टैक्स का। भैया देखिए, हमारे कतर में जनरल टैक्स अथॉरिटी GTA ने एड्रेस किया है एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो कि लोगों के बीच बहुत सराउंड कर रहा है। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, पता है तुमको स्वीट एंड ड्रिंक्स में ना कतर में टैक्स लगने वाला है। लेकिन उन्होंने क्लियर किया है कि ये किस पे लगने वाला है। यस, ये सेलेक्टिव बेस्ड ऑन शुगर कंटेंट उन सारे शुगरी प्रोडक्ट्स में नहीं लग रहा है जो कतर में मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन पे लग रहा है जो एक तरह से ये एक वो ड्रिंक होते हैं जो प्री पैकेज्ड होते हैं। यस, ये स्वीटेन ड्रिंक पे जो टैक्स वाली बात आई है, ये टैक्स उन प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल नहीं लगता जो स्वीट हैं और शुगर कंटेन करते हैं। ये सिर्फ प्री पैकेज स्वीट एंड ड्रिंक्स पे लग रहा है जहां पर शुगर होती है। यस, या आप यूं कह लें अगर फ्रेशली मेड ऑर्डर बेवरेजेस हैं, यानी कि एकदम खास जूस आपके लिए रेस्टोरेंट में या कैफे में बन रहा है, उसमें इस तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। हालांकि अगर प्री पैकेज है तो उस पर एक्साइज टैक्स लॉ 2026 का लॉ नंबर 2 लगेगा। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हर मीठी चीज पे यहाँ टैक्स लगने वाला है। अगर एनर्जी ड्रिंक की बात करें तो वो अगर शुगर बेस्ड हैं तो उन पर लगेगा, एंड जरूर लगेगा उन सारे ड्रिंक्स पर लगेगा जो कि प्री पैकेज्ड हैं, या डाइट एंड जीरो शुगर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो 0% टैक्स रेट के थ्रू टैक्स किए जाएंगे। कुल मिलाकर बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस दे दिए, मतलब हर चीज जो मीठी आप पी रहे हैं ऐसा नहीं है कि उस पर टैक्स लगेगा, ये ज्यादातर उन ड्रिंक्स पे ही लगने वाला है जो प्री पैकेज्ड होंगी एंड स्वीट एंड ड्रिंक होंगी और शुगर उसमें कंटेन होता है। चलिए, जिस उम्मीद के साथ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, कतर नेशनल विजन 2030 का ये नया टैक्स सिर्फ और सिर्फ प्री पैकेज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर ही आया, ये एक अच्छी बात है। अब आप फ्रेश जूस पीजिए, अपने आप को चुस्त तंदुरुस्त रखिए और एक मेरे लिए भी ऑर्डर कीजिए। बस थोड़ी देर में शो खत्म होगा, हम आपके पास आएंगे। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: चीज तुझे दे दी और हम भी आपको अपना दिल दिए, तभी तो सुबह सवेरे आ रहे हैं आपके साथ मन लगाने। लेकिन फिलहाल तो सूरज चाचू ने ब्राइटनेस को अपना दिल दे दिया है, इससे तेजी से बढ़ा रहे की पूछे मत। वैसे दिन का आज मैक्सिमम तापमान गेस किया जा रहा है अराउंड 40 रहेगा एंड मिनिमम अराउंड 31 आ जाएगा। हालांकि पिछले दिनों की अगर गर्मी की बात करें तो प्रचंड रूप से गाड़ी के अंदर मुझे अच्छे से याद है थर्सडे को मैंने 50 डिग्री सेल्सियस वाली फील भी ली है। बिल्कुल मिलाकर नहीं कहना चाहता हूं, शायद आज पिछले दिनों के मुकाबले पारा जरूर नीचे रहेगा। अगर बात करें तो हवाओं की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, ह्यूमिडिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, 38% ऑन एन एवरेज आज रहेगी। एंड ये याद रखिए कि जैसे ही आप गाड़ी से बाहर निकले अगर आप चश्मा पहनते पहले ही से निकाल लीजिए ताकि पहुंच पाए। 89.6 मिर्च जीवन पर मी सिंह टाटा बाय, लौटेंगे कल सुबह एक बार फिर से ढेर सारी बातों के जखीरों को लेकर, यही मिर्ची पर ढेर सारा मस्ती फन करेंगे। तब तक के लिए आप अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल के आवाज में अगला गाना। कभी कभी कुछ लोगों को आप समझा नहीं सकते तो इसलिए चुप रहना ही बेहतर है।
1: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: भाई गाना पसंद आने के लिए इतने प्रोसेसेस तो नहीं होते।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप और हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सिंगर एंड कंपोजर अमाल मलिक ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे मैं तो इत्तेफाक नहीं रखती हूँ यार। सो बेसिकली इमरान हाशमी की मच अवेटेड फिल्म आवारापन 2 में अमाल मलिक ने अपना म्यूजिक दिया है और इस फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी कुछ दिनों पहले जो रिलीज हुआ जिसको लेके अरिजीत सिंह के कमबैक की भी बात हुई थी। वेल आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट, बट फिलहाल अमाल मलिक की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई उनके इस गाने उस एल्बम को लेकर उनके जो राइवल लोग हैं ना वो पेड पीआर कर रहे हैं और उनके गाने को उनके साउंडट्रैक को अटैक कर रहे हैं। बट यार अमाल अगर ये बात सच है तो मेरे पास तो पैसा नहीं आया यार, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे ये गाना कुछ खास समझ नहीं आया। एंड उससे भी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इज द थिंग जो आपने कहा। सो अकॉर्डिंग टू अमाल मलिक एवरी सॉन्ग नीड्स टाइम टू ब्रीद। उनके हिसाब से इंसान के सिस्टम तक दिल तक पहुंचने के लिए ना उसको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है ऑडियंस के बीच। बट कसम से जिस दिन ये गाना आया था उस दिन सुना मैंने, उसके बाद 2-3 दिन लगातार सुनने की कोशिश की कि क्या पता अब पसंद आए, बट सॉरी सर दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एन इमरान हाशमी एल्बम। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए।
3: आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। पेट्रियोटिज्म के बाद अब हॉरर जॉनरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं अहान शेट्टी, बोले तो सुनील शेट्टी के सुपुत्र यार, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर 2 के बाद अब विक्रम भट्ट की अपकमिंग फिल्म 1920 कोल्ड विंटर के स्टार कास्ट को ज्वाइन किया है। शूटिंग नवंबर से शुरू होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। बाकी ये 6th इंस्टॉलमेंट होगा इन द 1920 फ्रेंचाइज, जिसके फीमेल लीड की तलाश अभी भी जारी है। बट यस, अहान शेट्टी के बारे में इस चीज को लेकर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। राघव जुयाल की अपकमिंग फिल्म भाई तेरा स्टार है का नया गाना सुना? नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, बिकॉज इट इज येट अनदर रिक्रिएशन। हाँ जी, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, ये गाना जो था उसका 2.0 वर्जन आया है, जिसमें राघव और निहारिका एनएम साथ नजर आ रहे हैं। देव नेगी और पलक मुछाल ने इसमें आवाज दी है। बाकी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन की बात करें तो भाई जतिन ललित का म्यूजिक था, जिसके रिक्रिएटेड वर्जन में लिरिक्स दिए हैं समीर अंजान एंड मोहसिन शेख ने। बाकी विवेक बी अग्रवाल डायरेक्टोरियल ये फिल्म 30th ऑफ जून को थिएटर्स में आएगी। So you better mark your calendars for this one. बटवारा 1947 से नया गाना आया है, नाम है इसका कहां चले गए हो राम। शबाना आजमी इस गाने को लीड करते नजर आ रही हैं, एंड इट इज एन इमोशनल ट्रैक जिसको एआर रहमान ने कंपोज किया है। जावेद अख्तर साहब के बोल हैं, अनुराधा पौडवाल और शान की आवाज है। बाकी राजकुमार संतोषी डायरेक्टोरियल इस फिल्म में सनी देओल के साथ साथ प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह नजर आएंगे। एंड द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 14th ऑफ ऑगस्ट, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन एज वेल। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: तू दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

0: हरगिज झुकेगा नहीं साला।
1: खेलो मगर प्यार से।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पिटी उन्होंने नवा वाले से पहले की आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े। मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ। बाबू मोशाय हेलो जी हाय। तो भाई ड्रिल ये होता है कि आपको मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में अपना नंबर भेजना होता है ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे कौन है?
4: आपकी बात हो रही है नवनील से।
1: ओह माय गॉड दैट स्टाइल, आई लाइक इट। अच्छा आप ये एक बात बताओ, गेम खेलने के लिए तैयार हो आप?
4: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है, जजंतरम ममंतरम के लीड एक्टर कौन है?
4: जावेद जाफरी।
1: क्या बात है, जावेद जाफरी डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे किस फिल्म में आ जाते हैं?
4: धमाल धमाल धमाल धमाल।
1: धमाल में मानव का भाई कौन है?
4: अरशद वारसी।
1: अरशद वारसी किस फिल्म में भाई ने बोला करने का तो करने का?
4: मुन्ना भाई एमबीबीएस।
1: मुन्ना भाई में डॉक्टर अस्थाना की बेटी से किसको प्यार होता है?
4: तो मुन्ना भाई को, संजय दत्त।
1: संजय दत्त किस फिल्म में जुल्मी बड़ा दुखदायक है?
4: खलनायक।
1: खलनायक में किसकी चोली के पीछे दिल है?
4: माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित।
1: माधुरी दीक्षित का घाघरा किस फिल्म में टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है?
4: जिसमें रणवीर था, ये जवानी है दीवानी।
1: बहुत बढ़िया, ये जवानी है दीवानी में बनी के बेस्टी से किसको प्यार होता है?
4: कल्की को प्यार होता है।
1: यस, कल्की की किस फिल्म में उनके बैग का नाम बैगवती होता है?
4: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
1: बहुत बढ़िया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में पिंक फोन कौन चलाता है?
4: ऋतिक रोशन।
1: ऋतिक रोशन रोहन लड्डू रायचंद किस फिल्म में है?
4: जिसमें शाहरुख खान है। कभी खुशी कभी गम।
1: कभी खुशी कभी गम में कह दिया बस कह दिया ये कौन बोलता है?
4: कह दिया तो कह दिया, करीना कपूर।
1: आए हाय, इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो ये नाम लिया है ना तुमने नवनील, बट कोई नहीं, इस गेम को इतना मस्त लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको ये टैग तो जरूर दूंगी यार।
2: मिर्ची फिल्म ची।
1: तो बाबू मोशाय नवनील जिस पॉइंट पे अटक गए और उसके आगे का गेम अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर डीएम कीजिए, बाकी तो आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
4: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ, ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे तो वो सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे में लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
3: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्म की गेम खेलने की बात कर रही हूँ। बाबू मोश आए, और आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे थे नवनील, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं विशाल। तो शुरू करें?
3: जरूर करूंगा।
0: ऑल राइट, तो जिस सवाल पे नवनील लटके थे वॉज कभी खुशी कभी गम में कह दिया तो कह दिया, ये कौन बोलता है?
3: अमिताभ बच्चन।
0: अमिताभ बच्चन गुरुकुल के सरू प्रिंसिपल किस फिल्म में बने हैं?
3: शाहरुख खान वाली मूवी है वो, एक सेकंड एक सेकंड, मोहब्बतें। मोहब्बतें
0: मोहब्बतें में लोगों के आगे पीछे किसकी आत्मा डांस करती है?
3: मोहब्बतें में किस, ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय की फिल्म जिसमें वो एक हॉट शायरा बनी है?
3: ए दिल है मुश्किल
0: में अलीजे से एक तरफा प्यार किसको होता है?
3: रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर किस फिल्म में पापा पगलू बने हैं?
3: ओके, ये तो अभी मूवी आई थी, मैं अनिल कपूर।
0: एनिमल
3: पापा मेरी जान।
0: एनिमल में अबरार कौन है?
3: अबरार है हमारा बॉबी भाई।
0: बॉबी देओल की किस फिल्म में वाइफ स्वॉपिंग की बात होती है?
3: जिसमें अक्षय कुमार भी है। अजनबी। यस
0: ओके, अजनबी में बॉबी देओल की वाइफ कौन है?
3: अजनबी में बॉबी देओल की वाइफ है करीना कपूर।
0: करीना कपूर की किस फिल्म में रोबोट्स हैं?
3: एक्टर मतलब जो विलन होता है उसके नाम से ये मूवी है, रावण।
0: रावण में गेम डिजाइनर कौन होता है?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान कैदी नंबर 786 किस फिल्म में है?
3: वीर जारा।
0: यस, वीर जारा में उनकी डिफेंस लॉयर कौन बनती है?
3: उनकी डिफेंस लॉयर बनती है रानी मुखर्जी।
0: क्या बात है, रानी मुखर्जी की किस फिल्म में उनके हस्बैंड रेसर होते हैं?
3: तारा रमपम
0: में रेस करते हुए एक्सीडेंट किसका होता है?
3: उसका ही होगा, सैफ अली खान का।
0: तो भाई आज के हमारे दूसरे मिर्ची फिल्मची हैं विशाल जी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: नहीं नहीं बाबू मोशाए, फोमो में जाने की जरूरत नहीं, ये गेम कल फिर से वापस आएगा राइट हियर ऑन मिर्ची, और पार्टिसिपेट करना है तो अभी से ही अपना नंबर मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे डीएम कर दो। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑल।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मुझे लंबे नाखून पसंद है, पर मैं हमेशा उन्हें चबा लेती हूँ, क्या करूँ?
1: अरे चबा के खाना तो अच्छी बात है, कीप इट अप। और चाहिए तो ब्यूटी पार्लर चली जा, बहुत वैरायटी है उनके पास।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: বাবু মশাই, সাইজ ডাজন্ট ম্যাটার ইয়া।
1: শ্রুতি শ্রুতি
2: মে তো বড়ি ফিল্মি হু।
0: এক্সকিউজ মি, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं तो मूवीज के साइज की बात कर रही हूँ यार। आप कहाँ जा रहे हो डर्टी माइंड? खैर, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं सिर्फ 20 मिनट मांगूंगी आपसे, क्योंकि आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग शॉर्ट मूवीज की बात कर रही हूँ जो 20 मिनट से भी कम ड्यूरेशन के हैं। इन द लिस्ट सबसे पहले वील टॉक अबाउट कृति, नंबर दो पे हम बात करेंगे 10th रेस की, नंबर तीन पे राह, नंबर चार पे रश्क एंड नंबर पांच पे इलायची। सो शुरू करते हैं कृति से, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2016, डायरेक्टेड बाय शिरीष कुंदर, और इस फिल्म में मनोज बाजपेयी, राधिका आप्टे एंड नेहा शर्मा लीड रोल्स में हैं। टॉकिंग अबाउट द मूवी, अगर मैं कहूं कि आपके थॉट्स ही आपको रिसीव करते हैं तो सो बेसिकली ये फिल्म आपको एक चीज पे विश्वास करने पे मजबूर कर देगी जब तक इसका अंत नहीं देखोगे आप। सो साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर अगर पसंद है आपको, देन बकल अप बाबू मोशाय, क्योंकि ये फिल्म आपको अलग लेवल पे लेकर जाएगी। वेल, मेरी इस लिस्ट में और भी चार ऐसी फिल्मों की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: Hello.
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बड़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: मैं तो आपके ही 20 मिनट की बात कर रही हूँ यार बाबू मोशाय, क्योंकि आपको ही आजकल टाइम नहीं होता ना कि आप अपने एंटरटेनमेंट का ध्यान रख पाए। तो बस पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू आज कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग शॉर्ट फिल्मों की बात कर रही हूँ जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर डालना चाहिए। लिस्ट में सबसे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट द मूवी कृति। अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट 10th रेस। भाई साहब, ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 2011, डायरेक्टेड बाय गौरव मिश्रा, जिसमें राहुल बग्गा, नीरज शर्मा, उल्हास और पंकज त्रिपाठी लीड रोल्स में हैं। इट इज अ ग्रिपिंग टेल ऑफ हाई स्टेक्स रिस्क, जिसमें रेजर शार्प स्ट्रेटजी है, एस्केलेटिंग क्राइम है, और इस सब को लीड कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी। सो बेसिकली मूवी में चार लोगों का परफेक्ट क्राइम अटेम्प्ट करने का प्लान है, और इनका ये फ्लॉलेस प्लान तब तक मस्त होता है जब तक ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाता। अ मस्ट वॉच एज ऑफ योर सीट थ्रिलर जो आपको अपनी लिस्ट में ऐड जरूर करना चाहिए। मूविंग ऑन नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट राह। वेल, दिस मूवी रिलीज्ड इन द ईयर 2015, डायरेक्टेड बाय प्रतीक पयोधी, और इस मूवी में स्वर्णिमा तेलांग और ऋषि वर्मा लीड रोल्स में हैं। सो बेसिकली दिस मूवी फॉलोज टू स्ट्रेंजर्स जो एक कार राइड पे जाते हैं और दोनों के मस्त डार्क सीक्रेट्स हैं। माइंड यू, वन ऑफ देम इज अ मर्डरर, लेकिन कौन, ये जानने के लिए आपको मूवी के अंत तक पहुंचना ही पड़ेगा। खैर, मेरी इस लिस्ट में और भी दो ऐसी ही फिल्मों की बातें बाकी हैं, बट इन अ वाइल्ड टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। श्रुति आपके साथ है।

0: It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं, जबकि साइकिल की बजेगी।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: छोटी छोटी चीजें भी बड़ा मजा दे जाती हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एक्सक्यूज मी डर्टी माइंड, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी टेल यू, मैं शॉर्ट फिल्म्स की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्मों की, जो 20 मिनट के अंदर ही आपको अलग लेवल का मजा दे जाएंगी। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी कृति, नंबर दो पे हमने बात किया 10th रेस के बारे में, नंबर तीन पे वी टॉक्ड अबाउट राह, अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट रश्क। ये मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 2020, डायरेक्टेड बाय राजीव वालिया, जिसमें भुवन अरोड़ा, पूजा भामरा, पलक पुरस्वानी एंड श्रीश शर्मा लीड रोल्स में हैं। बाकी इस फिल्म को देखने के पहले प्रिपेयर फॉर अ सीरियस माइंड गेम, हाँ, क्योंकि ये फिल्म रिवॉल्व करती है अराउंड अ बिजनेसमैन जिसके ऊपर अपनी वाइफ को मारने का इल्जाम लगा है। वेल, एज ही नरेट्स हिज वर्जन ऑफ इवेंट्स, जो सच्चाई है उसमें काफी सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते हैं। वेल, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं नंबर पांच पे, लेट्स टॉक अबाउट द मूवी इलायची, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2015, डायरेक्टेड बाय देवशीष मखीजा, जिसमें विभा चिब्बर, निमृत कौर और दिव्येंदु शर्मा हैं। वेल, इमेजिन करो बीइंग स्टक विद समवन फॉरएवर एंड एवर। सो बेसिकली ये मूवी एक डार्कली कॉमिक येट चिलिंग टेल है ऑफ अ हस्बैंड जो अपनी वाइफ को अकेला छोड़ने से मना कर देता है, इवन आफ्टर डेथ, माइंड यू। बाकी फिल्म में निमृत कौर की फ्रस्ट्रेशन इज ऑल टू रियल एंड द एंडिंग, भाई साहब, अनफॉरगेटेबल एंड हॉन्टिंग। नहीं देखी फिल्म तो अपनी वॉच लिस्ट में इसको जरूर डालना। बाकी मेरे इस लिस्ट में और भी कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग शॉर्ट फिल्म ऐड करना चाहो, देन प्लीज डू दैट, MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
3: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा के?
4: अलार्म लगा है। ओ कॉल, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
3: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
2: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
6: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot. It's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। पेट्रियोटिज्म के बाद अब हॉरर जॉनरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं अहान शेट्टी, बोले तो सुनील शेट्टी के सुपुत्र यार, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर 2 के बाद अब विक्रम भट्ट की अपकमिंग फिल्म 1920 कोल्ड विंटर के स्टार कास्ट को ज्वाइन किया है। शूटिंग नवंबर से शुरू होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। बाकी ये सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट होगा इन द 1920 फ्रेंचाइज, जिसके फीमेल लीड की तलाश अभी भी जारी है। बट यस, अहान शेट्टी के बारे में इस चीज को लेकर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। राघव जुयाल की अपकमिंग फिल्म भाई तेरा स्टार है का नया गाना सुना? नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, बिकॉज इट इज येट अनदर रिक्रिएशन। हाँ जी, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, ये गाना जो था उसका 2.0 वर्जन आया है, जिसमें राघव और निहारिका एनएम साथ नजर आ रहे हैं। देव नेगी और पलक मुछाल ने इसमें आवाज दी है। बाकी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन की बात करें तो भाई जतिन ललित का म्यूजिक था, जिसके रिक्रिएटेड वर्जन में लिरिक्स दिए हैं समीर अंजान एंड मोहसिन शेख ने। बाकी विवेक बी अग्रवाल डायरेक्टोरियल, ये फिल्म 30 जून को थिएटर्स में आएगी। So you better mark your calendars for this one. बटवारा 1947 से नया गाना आया है, नाम है इसका कहां चले गए हो राम। शबाना आजमी इस गाने को लीड करते नजर आ रही हैं, एंड इट इज एन इमोशनल ट्रैक जिसको एआर रहमान ने कंपोज किया है। जावेद अख्तर साहब के बोल हैं, अनुराधा पौडवाल और शान की आवाज है। बाकी राजकुमार संतोषी डायरेक्टोरियल इस फिल्म में, सनी देओल के साथ साथ प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह नजर आएंगे। एंड द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 14th of August, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन एज वेल। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट। देखो

0: Mirchi Helpline?
1: मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: सबको 6 फुट हाइट वाले लड़के चाहिए, व्हाट अबाउट मी?
1: अरे भाई तुझे क्या चाहिए मुझे कैसे पता चलेगा? तो खुद डिसाइड कर।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ब्रेड पकौड़े की कसम रणबीर कपूर को रणवीर सिंह की तरफ से मैं थैंक्स बोल देती हूँ यार। अगर ब्रेड पकौड़े की कसम से आप ये नहीं समझ पाए कि मैं फिल्म बैंड बाजा बारात की बात करने वाली हूँ बाबू मोश राय, तो क्या खाक फिल्मी है आप? जरा इंटेक अपना बढ़ाइए मेरे शो का, देखिएगा फिर दिन दोगुनी रात चौगुनी किस तरीके से फिल्मी आपा आपके अंदर घुसता है। बट यस, टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म जो रिलीज हुई थी साल 2010 में, जिसको डायरेक्ट किया था मनीष शर्मा ने और जिस फिल्म के साथ रणवीर सिंह ने अपना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डेब्यू किया था, उसके लिए मैं रणबीर कपूर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये फिल्म सबसे पहले रणबीर कपूर को ऑफर की गई थी, बट ही डिडंट वांट टू प्ले बिट्टू। लेकिन बाद में जब ये फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म कर गई ना, तो रणबीर कपूर को रिग्रेट हो रहा था अपनी उस डिसीजन पे। बट कोई नहीं, उनकी वजह से रणवीर सिंह को इतना अल्टीमेट लेवल का डेब्यू का मौका मिल पाया यार। बाकी अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो लेट मी टेल यू, फिल्म में रेडियो मिर्ची का जिक्र भी है, और सिर्फ जिक्र नहीं, बेसिकली जब बिट्टू और श्रुति के बीच में वो कांड हो जाता है ना, और बिट्टू श्रुति को लास्ट टाइम उसके घर ड्रॉप कर रहा होता है, तो ही इज लिसनिंग टू रेडियो मिर्ची, एंड स्पेसिफिकली हमारे आरजे नवेद बोल रहे होते हैं उनके कानों में। पता था आपको? चलो कोई नहीं, मैंने बता दिया ना। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट। बेसिकली जब बिट्टू और श्रुति के बीच में वो कांड हो जाता है ना, और बिट्टू श्रुति को लास्ट टाइम उसके घर ड्रॉप कर रहा होता है, तो ही इज लिसनिंग टू रेडियो मिर्ची, एंड स्पेसिफिकली हमारे आरजे नवेद बोल रहे होते हैं उनके कानों में। पता था आपको? चलो कोई नहीं, मैंने बता दिया ना। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Murga, murga. La viva la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पे जान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना। हाँ
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से 1 बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
4: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
4: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: अरे यार जरा ये भी बता दो कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
8: दोनों मिलेगा।
9: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: यार देखो, हिट होना अलग बात है और हिस्ट्री क्रिएट करना अलग।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची बेटी उन दिन हुआ बाबू मोशाय, और अगर नेशनल अवार्ड्स का नाम आता है तो ये सुनते ही बात समझ में आ जाती है कि यार यहाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं, परफॉर्मेंस का कलेक्शन काउंट होता है। और इस साल के 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सबसे बड़ी जीत रही आर्टिकल 370 की, जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। एंड इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने अपना पहला नेशनल अवार्ड भी जीता है एज द बेस्ट एक्ट्रेस। नॉट जस्ट दैट, इस फिल्म के लिए ही म्यूजिक प्रोड्यूसर शाश्वत सचदेव को भी बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवार्ड दिया गया है। मूविंग ऑन, बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी इस बार शेयर हुई है। सबसे पहले तो मलयालम सिनेमा के पावर हाउस ममूती को ब्रह्मा युगम के लिए यह अवार्ड दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए नेशनल अवार्ड मिला। और अगर डायरेक्शन डिपार्टमेंट में बाजी मारने की बात करें तो राजकुमार पेरियासमी को फिल्म अमरान के लिए ये अवार्ड दिया गया। वहीं कमर्शियल सिनेमा भी पीछे नहीं रहा, पुष्पा 2 को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड मिला है। एंड दिस अवार्ड इज अ प्रूफ कि भले ही आपकी फिल्में आपका काम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करे ना करे, अगर उनको इस अवार्ड कैटेगरी में डाला गया तो आपने कोई ना कोई तीर तो जरूर मारी है। और जब टैलेंट को मिलता है नेशनल अवार्ड तो अपलॉज सिर्फ थिएटर्स में नहीं, पूरे इंडिया में गूंजता है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड हियर्स माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: भैया मेरे हिसाब से तो ये बॉडी पॉजिटिविटी नहीं है।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हूँ आप, एंड आई एम श्योर आपको धमाल 4 के बारे में तो पता होगा। कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी ये फिल्म, एंड उसमें एक किरदार है अंजलि आनंद ने जिस किरदार को प्ले किया है। जैसा कि हम जानते हैं, या अगर नहीं पता हो तो बता दूं, अंजलि आनंद जो है वो हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर एक फ्लैग बेरर मानी जाती है। बट धमाल 4 में जो किरदार उन्होंने निभाया है उसकी वजह से उनको काफी सारे बैकलैश भी मिले हैं, जिसपे शी एड्रेस्ड बॉडी शेमिंग डिबेट्स, एंड उन्होंने कहा कि उनकी डेफिनेशन उनका अपीयरेंस नहीं है और वो अपने काम को इस चीज से कभी भी ओवरशैडो नहीं होने देती। बट अंजलि, मैं जिस पर्सपेक्टिव से आपकी इस फिल्म को देख के आई हूँ, मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग प्लस साइज में आते हैं, एंड दे वर लेजिट ऑफेंडेड बाय द रिमार्क्स जो इस फिल्म में आपके ऊपर किए गए थे। वो सीन में आपके एंट्री पे हाथी की आवाज हो या अदर बॉडी शेमिंग जोक्स जो आपके ऊपर मारे गए हैं इन द मूवी। सो आई एम सॉरी, दिस फॉर मी इज नॉट बॉडी पॉजिटिविटी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और आप इस चीज पे क्या राय रखते हैं वो मुझे जरूर बताइएगा मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सब प्रोटेस्ट का चक्कर है बाबू भैया।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्चीपीट यूनियन हो आप, एंड विजय वर्मा ने कुछ एक ऐसा इंस्टाग्राम पोस्ट डाला जिसके बाद उनके फॉलोअर्स घटते गए और वो हुए फिर फ्रस्ट्रेट और एक क्रिप्टिक स्टोरी भी अपलोड कर दी जिसमें लिखा था कि चुपचाप भी अनफॉलो कर सकते हो, सब बताना नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ, विजय वर्मा उन चंद सेलिब्रिटीज में से हैं जिन्होंने पब्लिकली सपोर्ट किया था स्टूडेंट मूवमेंट को जो नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पे हुआ। एंड एज वी ऑलरेडी नो कि उस चीज को लेकर जितने लोगों ने वीडियोज बनाई है काफी सारे बैकलैश भी मिले हैं, इनफैक्ट उनके फॉलोअर्स काउंट भी कम हुए हैं, और उसमें से ही एक है एक्टर विजय वर्मा जिन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए सॉलिडारिटी दिखाई थी विद स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग एट जंतर मंतर ओवर द अलेज्ड नीट पेपर लीक। और बस इनके सोशल मीडिया का हश्र भी वही हुआ जो हर दूसरे इंसान का फिलहाल हो रहा है, हु आर स्टैंडिंग इन सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बाकी दोस्ती के नाते मेरे फॉलोअर काउंट को थोड़ा बढ़ा दो यार, मिर्ची श्रुति के नाम से इंस्टा और फेसबुक में मिलूंगी, वहां जाके वो बटन दबा दो। टिल देन कीप लिसनिंग टू मिर्ची, मैं हूं आपके साथ श्रुति। इट्स

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
2: हाँ, लगता ही है। He's the kind of director, as an actor, you have to really trust him. Because his ideas come from where you'll never understand. And if you start justifying it, जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि you know, तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी। But you have to trust him.
1: ये थी प्रियंका चोपड़ा talking about विशाल भारद्वाज on मिर्ची It's Hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on मिर्ची It's Hot.
3: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
4: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: मुझे एक गाना आजकल बहुत याद आता है, मुझे मिल जो जाए थोड़ा पैसा ऐसा कैसा।
1: मस्त मौला गौरव।
0: यार कभी कभी कुछ चीजें ना जिंदगी में एकदम राइट टाइम पे चाहिए होती। जैसे इस वक्त मेरे पास हजारों नहीं लाखों रियाल होने चाहिए थे, क्योंकि रेट्स अच्छे चल रहे हैं। आपको बता दे रहे, अगर है तो भेजो। राइट नाउ एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26.45 रुपए है। यस 26.45 INR। वही एक कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज इज 92.14। अगर जनाब पाकिस्तान रुपीज की बात करें तो वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.33 पाकिस्तान रुपीज। तपाई को नेपाल रुपीज का रेट छ दाजो 42.27 का भल छ रेट है बहनी। हाँ जी हाजूर 42.27 को नेपाल रुपीज का रेट छ घर भजन राइट टाइम छ। अगर इसके बाद बांधु बांग्लादेशी टाका बात करेगा, बाड़ी जी का पैसा भेजने के लिए एकदम सही रेट तो है। एक्टर कतरी रियाल के बदले 33.97 तो 33.97 बांग्लादेशी टाका तो रेट चिलो। मस्त मोलो गौरव आपके साथ 89.6 मिर्चीवान हबीबी इट्स हॉट।

0: Mirchi Helpline?
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूं?
1: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: एक बात बताओ, बचपन में क्या आपका भी ख्वाब था कि आप बड़े साइज वाली चॉकलेट्स खाओ?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. आपको याद है, ads में there used to be chocolates bigger than the usual, और मैं हमेशा चाहती थी कि यार इतना बड़ा चॉकलेट का जो स्लैब है ना, ये खाने को मिल जाए. पर जो ads के बड़े वाले चॉकलेट बार्स हुआ करते थे ना, वैसे दुकान पर कभी नहीं दिखते थे. लेकिन thanks to globalization, we do get to see big, big chocolate bars on selective stores, जो आज भी जब देखती हूँ ना, तो दिल बड़ा excited हो जाता है यार. वो अलग बात है कि यार बचपन में इस चीज को लेकर मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी और बहुत चाहती थी कि मैं इतनी बड़ी चॉकलेट स्लैब्स खाऊं. लेकिन अब बड़े होने के बाद मैं कभी नहीं खरीदती इतने बड़े चॉकलेट स्लैब्स. एंड द रीजन बिहाइंड दिस बचपन का ख्वाब स्टिल अधूरा होना इज कि अब जब ये बड़े साइज के चॉकलेट्स मिलने लगे हैं ना, तो कैलोरीज और शुगर इनटेक का ज्ञान भी तो भरपूर आ गया है मार्केट में. और बस ये बड़े वाले चॉकलेट बार्स की जो भूख है, ये आज भी अधूरी है. और आपसे बात करते करते मुझे रियलाइज हो रहा है यार कि इसे ऐसा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान ने कहा है कि किसको पता कल हो ना हो. मैं क्यों वेट कर रही हूँ कि जब मैं एक सर्टन साइज पे पहुंच जाऊंगी तब मैं वो चॉकलेट बार खाऊंगी. आई थिंक आई शुड जस्ट डू इट. आप क्या बोलते हो, वेट नहीं करना चाहिए ना? बस तो फिर आज ही कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोर पर जाकर ना इसको खरीदने की कोशिश करती हूँ. बाकी आप मुझे बताना जरूर, हाँ, डीएम करके और माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, कि क्या आपको भी ऐसे शौक चढ़ा करते थे बचपन में कि यार ये बड़ा वाला चॉकलेट बार मैं भी खाऊं? बताना. अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को गियर में डाल रही हूँ. आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Sumanji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, हेलो।
2: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 3rd K 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है। आप मेरे को क्यों बता रहे हो, ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
2: तो मैं आपको, अरे मैडम
1: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल।
2: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
1: यार
2: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया, रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है। अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं,
2: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: अर्ज किया है
5: इरशाद।

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के
2: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: यार 90s के दौर में एक बड़ी क्यूट सी फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था अंजलि। और इस फिल्म का ये गाना, अंजलि अंजलि अंजलि हमारी आंखों का तारा अंजलि, याद है आपको ये फिल्म?
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And long before तारे जमीन पर या सितारे जमीन पर जैसी फिल्में आई, this film was made by Mani Ratnam, who worked on a movie talking about special needs kids, जिस टॉपिक को 90s के दौर में किसी ने नहीं छुआ था। And Anjali was among the first Indian mainstream films जो कि एक ऐसे बच्चे के ऊपर बनी थी who had mental disabilities, और जिस फिल्म ने autism जैसे developmental delay के बारे में awareness फैलाने की कोशिश करी थी, which was a very very rare thing in those days। हाँ, इस फिल्म की जो लीड थी, यानी कि वो जो छोटी सी बच्ची जिसके ऊपर ये फिल्म का टाइटल रखा गया था, her real name was baby Shamili। और इस बच्ची की उम्र पता है क्या थी जब उसने ये अंजलि का रोल प्ले किया था? She was just 2.5 years old। Can you just imagine, इतनी छोटी सी बच्ची ने अपने कंधों पर पूरी फिल्म चलाई है। और यही वजह थी कि बेबी शामली इवेंचुअली गॉट द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट फॉर हर रोल, जिसकी वजह से शी बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट रिसिपिएंट्स एवर। और आप भी सोच रहे होंगे कि यार इस फिल्म की कास्टिंग किस बेसिस पे की गई होगी। वेल, वेरी इंटरेस्टिंगली मणिरत्नम सर वॉन्टेड टू कास्ट रियल स्पेशल चाइल्ड, लेकिन फिर रोल इतना कॉम्प्लेक्स था कि उस स्पेशल चाइल्ड से वो एक्टिंग करवाना, वो इमोशंस निकलवाना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से उन्होंने काफी सारे टॉडलर्स के ऑडिशंस लिए बिफोर दे सिलेक्टेड बेबी शामिली। एंड इस फिल्म को शूट करने के लिए कहा जाता है कि मनी सर ने काफी सारे हिडन कैमरास का इस्तेमाल किया, सो दैट वो जो चाइल्ड एक्टर्स हैं उनके नेचुरल मोमेंट्स को कैप्चर कर पाए। क्योंकि यार बचपन तो बड़ा मासूम होता है ना, आप उनको एक्टिंग के दाव पेच सिखाओगे ना, तो वो नेचुरल मासूमियत जो है वो निकल कर नहीं आएगी, जो कि वो तब कैप्चर कर ली जाए जब वो निकल कर आए। और कितने सारे तो ऐसे सीन्स थे जिनको की शूट करने के लिए सिर्फ सिंगल टेक्स लिए गए थे, ताकि बच्चों की स्पॉन्टेनिटी जो है वो मेंटेन रहे। यानी कि पहला टेक जैसा भी गया है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर वो मासूमियत और स्पॉन्टेनिटी थी विच वॉज रिक्वायर्ड ऑन स्क्रीन, तो उस टेक को वैसा का वैसे ही रहने दिया और रीशूट नहीं किया। आई थिंक शायद इसी वजह से ये मूवी हमें इतनी ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि इस फिल्म के अंदर वाकई में इतना ऑर्गेनिक इमोशन शामिल है कि जब हमने ये फिल्म देखी तो हम खुद भी रो दिए। लेकिन सिर्फ हम ही नहीं रोए थे, सेट पर कई सारे लोग रोए थे, जिनके बारे में बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैंने जब ये फिल्म देखी थी ना अंजलि, मैं बहुत छोटी थी यार, और मुझे आज भी याद है कि इस फिल्म को देखकर मैं इतना रोई हूँ और इतना इमोशनल हुई हूँ कि मुझे उस ऑन स्क्रीन कैरेक्टर से मोहब्बत हो गई थी. और मैं इतनी इनक्विजिटिव थी टू नो अबाउट दैट किड जो कि अंजलि बनी हुई थी पूरी फिल्म में. लेकिन सैडली तब हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था टू नो मोर थिंग्स अबाउट व्हाट्स गोइंग अराउंड. बट ये इकलौती मैं ही नहीं थी जो इतनी इमोशनल हो गई थी इस फिल्म को देखने के बाद. जब ये फिल्म शूट हो रही थी, एट दैट टाइम टू काफी सारे लोग सेट्स पर इमोशनल हो गए थे.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड रेवती जो कि शामली यानी कि ऑन स्क्रीन अंजलि की मदर का रोल प्ले कर रही थी, उनके और शामली के बीच में काफी सारे ऐसे सीन्स थे जो कि इमोशनल सीन्स थे. और जब वो सीन्स शूट हो रहे थे ना, तो जितने भी क्रू मेंबर्स थे ना, वो भी साथ साथ रो रहे थे. स्पेशली वो सीन जो कि हॉस्पिटल में शूट किया गया था, एंड दैट वॉज अंजलिज डेथ सीन. That was really, really heartbreaking. आज भी जब मैं वो सीन देखती हूँ ना भाई, मुझे तो रोना आ जाता है बहुत भयंकर तरीके से. एंड इसके पीछे की वजह ये है कि मणिरत्नम सर बहुत अच्छी तरीके से और पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे बच्चों की परफॉर्मेंस को लेकर, और बच्चों को वो पर्सनली रिहर्स करवाया करते थे सारे के सारे सीन्स मल्टीपल टाइम्स, सो दैट बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकल कर आए कैमरा पे. क्योंकि उनकी कोशिश यही थी कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही पहले टेक के अंदर बेस्ट शॉट निकल कर आ जाया करता था. और वो ज्यादा टेक्स ले भी नहीं रहे थे इस फिल्म को शूट करने के लिए बच्चों के साथ. यही नहीं, मणिरत्नम सर वो सो इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ पेरेंट्स जो कि डील कर रहे थे विद स्पेशल चिल्ड्रन, कि उन्होंने इस फिल्म को महीनों की चाइल्ड साइकोलॉजी की रिसर्च वर्क के बाद ही शूट किया और लिखा. जिसका असर ये हुआ कि ये फिल्म इवेंचुअली वॉज बींग यूज एज अ रेफरेंस मटीरियल इन साइकोलॉजी एंड स्पेशल एजुकेशन स्टडीज अक्रॉस इंडियन यूनिवर्सिटीज. स्पीक्स अ लॉट अबाउट हाउ मनी सर डील्स विद द सोशल इश्यूज, और वो किस तरीके से इन सोशल इश्यूज को मेन स्ट्रीम सिनेमा में लेकर आते हैं और हाईलाइट करते हैं. ये उन्होंने सिर्फ अंजलि के साथ नहीं किया है, उनकी फिल्म बॉम्बे, दिल से, गुरु, ये सारी वो सारी फिल्म्स थीं जिन्होंने सोशल इश्यूज को उठा के मेन स्ट्रीम सिनेमा में ला के बड़े पर्दे पर दिखा के उसकी अहमियत को और बढ़ा दिया, और उन सोशल इश्यूज को बड़ी खूबसूरती से कैप्चर किया. ये है हमेशा का जादू जो मणिरत्नम सर अपने लेंस के साथ बिखेर ही देते हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: मिडडे मोहब्बत प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज. फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
0: यार एक बात मुझे समझाती नहीं है, कोई भी मूवी डाउनलोड करो प्रिंट हमेशा खराब निकलती है, क्या करूँ?
1: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है, तो तू प्रिंटर बदल देना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अब जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ना, उसको सुनते के साथ ही ना आपके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आने वाली है। सुनो जरा।
2: दानू है दानू, इतना सजानू, हाँ

0: याद है दानू
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
0: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड दानू डायनासोर वाज आवर संडे का एंटरटेनमेंट का पिटारा बॉस। हर संडे हम ये कार्टून देखा करते थे फॉर श्योर विदाउट एनी फेल। लेकिन पता है मुझे क्या खास बात पता लगी है अबाउट दानू? वेल एक्चुअली इंडिया में तो हम इसे दानू के नाम से जानते थे, लेकिन दानू तो वो हिंदी में बन गया था। एक्चुअली दिस वाज एन इंग्लिश कार्टून शो जिसको कि डेनवर द लास्ट डायनासोर के नाम से बनाया गया था, और हिंदी में ये दानू डायनासोर बन गया था। क्लियरली एट दैट टाइम इंग्लिश कार्टून्स का मार्केट बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था, तो आई तो लव दानू डायनासोर देन डेनवर द लास्ट डायनासोर। एंड इन फैक्ट जो इंग्लिश वाला कार्टून था ना, उसका गाना सुनाती हूँ आपको मैं। अच्छा है ना? लेकिन स्टिल आई वुड से कि जो हमारा हिंदी वाला कार्टून था ना डब्ड वर्जन, दैट वाज मच बेटर। उसका गाना तो मेरा जिंदगी भर के लिए फेवरेट है। डायनासोर डायनासोर डायनासोर। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieva la burga.
1: Mirchi, burga. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात
2: है सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
1: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे,
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
2: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसका पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
2: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
4: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैंने प्यार किया कि एक्ट्रेस भाग्यश्री को तो सब याद रखते हैं। उन्होंने हालांकि ज्यादा फिल्में की नहीं और एक हिट फिल्म उनकी मैंने प्यार किया जो हमें हमेशा याद रह गई। और आज भी जब हम भाग्यश्री को देखते हैं ना तो यही सोच रहे होते हैं कि यार मैंने प्यार किया को रिलीज हुए तो बहुत साल हो गए यार, इनकी एजिंग कब रिवील होने वाली है।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये cute सी भाग्यश्री, आपको पता है मैंने प्यार किया है के बाद इन्होंने शादी कर ली थी अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड हिमालय के साथ, जो आज उनके हस्बैंड है। एंड इनफैक्ट आज भी ये कपल जो है ना, ये काफी इन लव दिखाई देता है, टच होट। लेकिन एट दैट टाइम जब इन दोनों ने शादी करी थी ना, तो ये बड़ी ड्रामेटिक सी शादी थी, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल। क्योंकि हुआ ये था कि भाग्यश्री की जो फैमिली थी उन्होंने इनकी इस शादी को अप्रूवल नहीं दिया था, जिसकी वजह से इनको अपनी फैमिली के बिना ही शादी करनी पड़ी थी। और भाग्यश्री की तरफ से आपको पता है कौन मौजूद था उनकी शादी में? सिर्फ सूरज बड़जात्या की फैमिली एंड हिमसेल्फ एंड सलमान खान। ये दो पार्टीज थी जो भाग्यश्री को रिप्रेजेंट कर रही थी थ्रू आउट उनकी शादी में, यानी कि ये लड़की वाले थे। एंड दिस इज सच अ क्यूट थिंग यार, फ्रॉम द रील टू द रियलिटी। दिस वॉज दैट मोमेंट जहां पर कलीग से दोस्त बनते हैं और दोस्त से रिश्तेदार बन जाते हैं और रिश्तेदार से रिश्तेदारी भी निभाते हैं। एंड इनफैक्ट मैंने प्यार किया कि जब शूट चल रही थी एट दैट टाइम ऑल्सो सलमान खान न्यू की भाग्यश्री और हिमालय जो है दे आर डेटिंग ईच अदर, तो वो भाग्यश्री को हिमालय के नाम पे इतना छेड़ा करते थे कि बेचारी परेशान हो जाया करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो मैंने प्यार किया वाली फ्रेंड्स वाली केमिस्ट्री है ना, वो वहीं से आया करती थी। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: मिडडे मोहब्बत प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का गुस्सा है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: The movie Baazigar, इसने हमारा दिल जीत लिया था. लेकिन क्या आपको पता है, हमारा दिल जीतने से पहले ये मूवी हॉलीवुड में भी काफी दिल जीत चुकी थी.
2: मिर्ची, टग्स ऑफ फिल्मिस्तान.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, not exactly Baazigar, but actually the story जिससे Baazigar inspired थी, that movie is A Kiss Before Dying, जो 1991 में रिलीज हुई थी, और Baazigar 1993 में रिलीज हुई थी. In fact, A Kiss Before Dying के अंदर इतने सारे ऐसे सीन्स हैं जो Baazigar में कट कॉपी पेस्ट किए गए हैं. लेकिन इसका एक और रीजन हो सकता है. Well, the reason is कि actually there was this novel जिसका नाम था A Kiss Before Dying, और ये जो दोनों ही फिल्म हैं, यानी A Kiss Before Dying and Baazigar, ये दोनों ही उस नॉवल से इंस्पायर्ड स्टोरीज हैं. तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि दोनों ही स्टोरीज एक जैसी दिखती हैं, लेकिन जो सीन्स हैं एकदम कट कॉपी पेस्ट किए गए हैं. अब उसका क्या बोल सकते हैं. यहाँ पर तो मामला यही है ना कि उठाया और लगाया, क्योंकि यार ठीक है स्टोरी सेम है बिकॉज राइटर एक है, लेकिन डायरेक्टर्स तो अलग अलग थे. खैर जो भी कहो, मेरा तो सॉफ्ट कॉर्नर ही है यार Baazigar की तरफ, बिकॉज इट वॉज शाहरुख खान भाई इस फिल्म के अंदर. हाउ केन आई डिसाइड नॉट टू लाइक दिस फिल्म, नेवर एवर, पाप है ये मेरे लिए. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
2: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे तो वो सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे में लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
1: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bolda only on Mirchi it's hot।
3: Hello shops, our product is phenomenal, one of a kind, but still profit nahi ho raha hai। Maine baba ji se advice li to kehte hain
4: office ke toilet mein toilet paper white nahi yellow lagao, profit aayega।
3: Relative se advice lo to kehte hain
5: kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga।
3: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
6: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
7: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now 7070-7687.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरी पार्किंग में मेरा पड़ोसी गाड़ी पार्क कर देता है, क्या करूं?
1: व्हाट क्या करूं? इट्स सिंपल ब्रो, थैंक यू बोल उसको, थैंक यू। फ्री वैलेट सर्विस दे रहा है यार वो।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज के टाइम पर देयर इज अ ड्रॉइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, लाउंज, लेकिन पुराने घरों में इतने फैंसी टर्म्स यूज नहीं हुआ करते थे बॉस। सीधे सीधे नाम थे हर कमरे के।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड बैक इन द ओल्ड डेज ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ये कमरों के साथ भी हुआ करता था कि जो काम वो कमरा किया करता था ना, वैसा ही नाम उस कमरे को दिया जाता था। जैसे कि जहाँ खाना खाते थे वो खाने वाला कमरा था, जहाँ टीवी देखते थे वो टीवी वाला कमरा था, जहाँ मम्मा डैडी रहा करते थे वो मम्मा डैडी का कमरा था, और नानी के यहाँ तो भाई फ्रिज वाला कमरा, बिस्तर वाला कमरा और गेहूं वाला कमरा भी हुआ करता था यार। यानी कि जैसा कमरा हुआ करता था, जो उसमें काम हुआ करता था, वैसा ही उसका नाम हुआ करता था। ये लिविंग रूम, लाउंज, डाइनिंग रूम, ये इतने फैंसी फैंसी नाम नहीं हुआ करते थे कमरों के। लेकिन फिर भी ना, कभी पता ही नहीं लगा कि हमने कैसे फ्रॉम खाने वाला कमरा टू डाइनिंग रूम का जो टर्म है ना, वो अपनी जिंदगी में अपना लिया। कैसे ये ट्रांजिशन हुआ, और जिसमें हमें पता भी नहीं लगाया कि हमें मुश्किल हुई थी कि नहीं हुई थी जब ये ट्रांजिशन हो रहा था हमारी लाइफ में। क्योंकि बचपन से तो हमारी आदत थी यार, अगर कोई चीज ढूंढनी होती थी जो कि टीवी वाले कमरे में रखी होती थी, तो एक आवाज आती थी कि अरे मेरी चप्पलें कहाँ है, तो अगला कहता था अरे टीवी वाले कमरे के बाहर ही तो उतारी थी तूने। एंड इट वॉज इजी टू फिगर आउट स्टफ। अब अगर कोई तब बोलता ना कि लाउंज के बाहर तो उतारी थी तूने, तो सब गोल हो जाते कि ये कौन सा कमरा आ गया यार हमारी जिंदगी के अंदर। वाकई में यार, कमरे में कमरा, कमरे में हम, इतने रंगीन थे ये नाम की कमरों के नाम में भी ये भरते थे दम। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिडडे मोहब्बत प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। जिया

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga.
1: Milci, burga. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहा है मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़िया। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कुकड़ू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Bachpan ke Khwab.
2: Yaadon ko chitthi.
1: यार सब बड़ों को आजादी से अपनी जिंदगी जीते हुए देखकर हमने बचपन में हमेशा यही सोचा कि वाह बड़ा होना कितना कूल है। और पूरे बचपन हमने यही दुआ की कि ऊपर वाले हमें जल्दी से बड़ा कर दो, बस जल्दी से बड़े हो जाएं हम। बड़े होंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एक्टर बनेंगे, सिंगर बनेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे। लेकिन जब बड़े हुए ना हम बचपन के ख्वाब, तो रियलाइज हुआ कि अब इन सारी चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती। ये तो अल्टीमेट गोल है ही नहीं। किसी ने हमें बचपन में ये क्यों नहीं समझाया कि बड़े होकर जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो होगा खुद के लिए वक्त, सनसेट देखते हुए चाय पीना, दोस्तों के साथ ट्रिप टालना नहीं सफर तय करना, तारों की छाँव में घंटों बैठना, चांद से बातें करना, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। अब समझ आया कि ये भागम भाग और हसल वाली लाइफ नहीं, सुकून जिंदगी का मोटो है। और बचपन के ख्वाब, मैं भी बदल गई हूँ और तुम भी बदल गए हो। क्योंकि क्या है ना कि मैंने अपने ख्वाब की डेफिनेशन जो है उसको बदल दिया है, जिसके चलते मैंने तुम्हें भी बदल दिया है। तो अब तुम बचपन के ख्वाब नहीं हो, अब तुम लड़कपन के ख्वाब हो, जिसमें मुझे आसमान की ऊंचाई नहीं छूनी है लेकिन मुझे जमीन पर बैठे हुए आसमान में लगे हुए तारों को ताकना है। मेरे भी ख्वाब बदल गए। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Midday Mohabbat presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गया, बीजू शाह का कंपोज किया गया ये गाना इज कैसेट के साइड बी का पांचवा गाना।
0: मिर्ची 90s कैसेट।
1: द गाना फ्रॉम द फिल्म गुप्त। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू। यार गुप्त का ना पूरा का पूरा एल्बम, सारे के सारे गाने वो जस्ट माइंड बॉगलिंग, बिकॉज ये जो म्यूजिक था ना वो जब तब आया था तब भी बड़ा हटके था और आज तक भी मैंने ऐसा म्यूजिक तो नहीं सुना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई मीन इफ यू थिंक डिफरेंटली देन डू लेट मी नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुप्त जैसा म्यूजिक जो है ना वो आज तक भी मैंने नहीं सुना है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो फॉर श्योर, बिकॉज ये तो कुछ हटकर ही लेकर आए थे यार ये लोग। एंड इस फिल्म के गाने कुछ ऐसे हैं कि सिंस ये एक थ्रिलर थी और रोमांटिक थ्रिलर थी, तो इस फिल्म के गानों में रोमांस तो है ही है, लेकिन जो रोमांटिक गाने भी चल रहे हैं ना उनका जो म्यूजिक है, देयर इज समवेयर सम थ्रिल इन दैट म्यूजिक। वो थ्रिलर मूवी का भी म्यूजिक लग रहा है साथ साथ, लेकिन ये बुरा भी नहीं लग रहा है, ये कॉम्बो बड़ा सटीक लग रहा है। दैट इज द मैजिक विच वीजू शाह डिड विद द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस म्यूजिक। एंड पुराने गानों में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि बात को ना सीधे से नहीं कहा जाता था कि हमें तुमसे मोहब्बत है, बात वहीं खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं नहीं, बात को ना थोड़ा सा घुमा फिरा कर कहा जाता था, जैसे कि इस गाने में लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, और कहा गया है कि यार तू हो कोई फूल तो तुझे चुरा लूं मैं, अपनी जुल्फों में लगा लूं मैं, पलकों के नीचे छुपा लूं मैं, और तू हो कोई जाम तो उड़ा लूं मैं, और अपनी प्यास बुझा लूं मैं। And I really really liked the lyrics from those times because of the reason ki yaar baat kahi bhi aur nahi kahi bhi aur seedhi bhi nahi gayi, tedi medi gayi, aur hame na tedi medi baatein jo hai na wo badi pasand aati hai, ye baat to hai। Haan lekin yahi kahi agar jab ladai ho jati hai aur tab koi tedi medi baatein kar raha hota hai to wo katai na pasand aati hai, but yeah when it's about romance seedhi baat agar na ki jaye aur aise tedi medi ghuma phira ke baat ki jaye, uljha uljha ke baat ki jaye to zyada maza aata hai। Wo kehte hai na ki ishq jab dheemi aanch pe pakta hai to uska zaika hi kuch alag nikal kar आता है। चलो जी मैं यहाँ से जाते हुए आपसे कहती हूँ हम हेराई प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते, लेकिन आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता, रितेश देशमुख आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
3: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
4: अलार्म लगा है। ओ कॉल, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
3: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
2: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
6: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
9: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन,
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूं?
1: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट।

एक दिन ना मेरी फ्रेंड ने अपनी बेटी से पूछा कि भाई तुम्हें खाना कैसे लगा है, कैसा लग रहा है। तो बेटी ने ना सिर्फ ये बोला, इट्स गिविंग 5 stars। उसके पापा बोले, यार आई एम कंफ्यूज्ड, व्हाट इज दैट, ये क्या था, व्हाट आर यू सेइंग। लेकिन आज की जो जेंजी है ना, उसको स्लेड, लुलू, ओरा, पीओवी, नो कैप, इनके जो वर्ड सुन के ना कभी कभी ऐसा लगता है कि इंग्लिश को भी अपडेट होना बहुत जरूरी है इस समय। लेकिन एक बात है, जेंजी सिर्फ नए वर्ड्स ही नहीं लाई है, नए आइडियाज भी लेके आई है। नई जनरेशन मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बात करती है, वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे इंपॉर्टेंस देना है उसकी बात करती है, एंड किसी भी ट्रेंड को ना ये ग्लोबल हिट बना देती है। तो भाई अगली बार अगर आपको कोई बोले ब्रो That's so mid. तो टेंशन मत लेना, बस समझ लेना, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होती रहती है लेकिन कनेक्शन हमेशा दिल से होता है। मैंने भी आप लोगों को दिल से अपना लिया है और अब मैं आपको दिल से ही सुनाऊंगी बहुत बेहतरीन गाने। बने रहना है मेरे साथ, क्योंकि अब शाम शानदार में आप खूबसूरत से गानों के साथ साथ खूबसूरत बातों के साथ साथ सिलसिला जारी रहेगा। तो बस बने रहिए मेरे साथ।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Burga, burga. La viva la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है.
3: हाँ जी, हाँ जी.
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ.
3: हाँ जी, हेलो.
4: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है.
4: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3rd K 35/14A 1st floor. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
3: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
3: मेरा सनसाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला.
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
4: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
3: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा. और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
4: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
3: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
4: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं. अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा.
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं, खाया भी नहीं है.

0: दोबारा कॉल करेंगे, आपका वक्त लिया, आप बड़े बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक
1: करूंगा।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
4: तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
6: दोनों मिलेगा। नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

सोचो आप एक रूम में बैठे हो, स्क्रीन पर एक छोटी सी फिल्म चल रही है, पिक्चर बिल्कुल साइलेंट है, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, ना हवा की आवाज, ना फुटस्टेप्स, और अचानक आप रियलाइज करते हो कि इमोशंस कितने अधूरे हैं। फिर कोई धीरे से पियानो की एक सॉफ्ट सी मेलोडी प्ले करता है एंड बारिश की हल्की सी आवाज ऐड होती है। दूर से एक आवाज दरवाजे बंद होने की साउंड भी आती है और वहीं सीन अचानक से दिल को छू जाता है। बस इसी मैजिक को ना समझाने और क्रिएट करने के लिए दोहा फिल्म इंस्टीट्यूट ने मथाफ अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट के साथ मिलकर एक अमेजिंग सा 5 दिन का समर वर्कशॉप निकाला है, जहाँ पे आप सीख सकते हैं बहुत कुछ। अगर आप भी फाइन आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये जरूर ज्वाइन करना चाहिए। विजुअल स्कोरिंग या फिर साउंड डिजाइनिंग सब कुछ आपको वहाँ पे वर्कशॉप में बताया जाएगा। इसके अलावा ये रोज शाम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक है, ये क्रिएटिव सेशंस चलते रहेंगे। एंड कभी कभी ना एक कहानी आंखों से कम और कानों से ज्यादा महसूस की जाती है, अगर आप ये मानते हैं तो जरूर ज्वाइन करिए। और बस ऐसे ही सुनते रहिए मुझे, स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

एक दिन ना मैं और मेरी दोस्त ना एक फैंसी से रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और बात चली मीठे की। तो भाई मीठा नहीं खाना चाहिए वो हम सबको पता है, लेकिन हाँ जब क्रेविंग होती है थोड़ी बहुत तो हम लोग चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक ये सब पी लेते हैं खा लेते हैं। लेकिन मेरी फ्रेंड बोली अरे यार अब वो भी नहीं खा सकते क्योंकि उस पर भी टैक्स लग गया है। और मैं मुस्कुराई और मैंने बोला अरे भाई नहीं ये नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्यादा ज्ञान लेना गलत बात होती है, पूरी बात सुन के ही किसी निष्कर्ष पे आना चाहिए। और मेरे एक और फ्रेंड ने बताया कि भाई उसने फोन निकाला और बताया कि देखो टैक्स अथॉरिटी ने एक ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन भी है जिसमें बोला है कि भाई देखो टैक्स हर मीठी चीज पर नहीं लगा है, टैक्स सिर्फ प्री पैक्ड स्वीटेंड ड्रिंक्स पर ही लगा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपकी डाइट वाली ड्रिंक्स है ना, जैसे कि जीरो शुगर वाली ड्रिंक्स है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, 0% टैक्स है, तो आप उसको बेचक खरीद के पी सकते हो। तो पहले दोस्त तो हंस पड़े और बोले अच्छा यार तुम मिल गए और तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं तो अब मीठे की स्ट्राइक पे ही चली जाती। और दोस्तों जिंदगी में ना ऐसा ही होता है, आधी अधूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो टेंशन क्रिएट कर लेती है, इसीलिए थोड़े बच के रहिए। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इससे कम जानिए, पहले फैक्ट्स को जान लीजिए और उसकी तह तक जाइए एंड देन मेक एनी डिसीजन यू वांट टू। तो बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन को ज़रूर चेक क्रॉस चेक कीजिए क्योंकि कभी कभी जो सच्चाई होती है ना वो सुनी सुनाई बातों से बिल्कुल अलग होती है। तो बस करना क्या है, पहले क्रॉस चेक कर लेना है उसी बाद ही डिसीजन लेना है। और ऐसे ही सिलसिला जारी रहेगा बातों का मेरे साथ यानी कि मिर्चीशा के साथ ऑन 89.6 मिर्ची वाने साथ।

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: ये माना कि रेडियो मिर्ची का हॉट है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम हर जगह हॉटनेस ही फैला रहे हैं।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल, बात कर लेते हैं वेदर की। तो वेदर रिपोर्ट इज 38 डिग्री सेल्सियस, सनी रहेगा एंड टोटली फील्स लाइक 49 डिग्री। ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा गर्मी फैल रही है, तो बस अपने आप को संभाल के रखिए, पानी पीते रहिए, सनस्क्रीन लगा के निकलिए, छाता लेके जाइए, और भी हो सकता है तो सब करिए, बस बाहर निकलना थोड़ा भी कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर जरूरी नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। शाम में निकलिए, शाम में भी गर्मी रहती है, बट स्टिल इट्स मच मोर प्लेजेंट देन इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून। बाकी ऐसे ही लगातार खूबसूरत बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
3: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगन एज रेडियो जॉकी, करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
4: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था, बहुत मजा आता था। मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
2: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
6: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
7: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
8: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
9: बार बार।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6
11: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मुझे लंबे नाखून पसंद है पर मैं हमेशा उन्हें चबा लेती हूँ, क्या करूँ?
1: अरे चबा के खाना तो अच्छी बात है, कीप इट अप। और चाहिए तो ब्यूटी पार्लर चली जा, बहुत वैरायटी है उनके पास।
2: खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi Studio Clock का टाइम शाम के 5 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार.
2: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.

शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

क्या बचपन में आप भी पिटे हो मेरी तरह? अगर हाँ तो मैं आपका दर्द बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि जब छोटे होते बड़े भाई होते थे ना, तो बड़े भाई पकड़ के ना ऐसा रेसलिंग करते थे जैसे WWE के कोई फाइटर्स होते हैं या बॉक्सिंग के कोई फाइटर्स होते हैं। तो कभी कभार तो ऐसा होता था कि पंच बॉक्स बैग समझ के ही अपने ग्लव्स पहन के कजिन्स ऐसा मारते थे हमको, हम भागते थे। एंड वाज सो हिलेरियस, क्या टाइम था यार। मतलब गर्मी की छुट्टियां ना बस इसी में निकल जाती थी, एक दूसरे को पीट पटाई करके, मार मराई करके, और रोके और तेरा भाई मुझे मार रहा है, मेरा भाई मुझे मार रहा है, क्यों है, तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरी बहन नहीं है, बस यही चलता था पूरी समर वेकेशन। और उसमें हमारे मम्मी जो होते थे ना, वो बहुत ज्यादा रेफरी का काम करते थे। लेकिन एक आपके लिए बढ़िया सी न्यूज लेके आई हूँ, ये कि कतर की बात करें तो यहाँ पे वन चैंपियनशिप ने एक बार फिर से अपना भरोसा जताया है। पिछले दो ब्लॉकबस्टर इवेंट्स की सक्सेस के बाद अब अगले 3 साल तक ये एक्शन कंटिन्यू रहेगा, और इस नए चैप्टर की शुरुआत होगी 26 मार्च 2027 को एस्पायर में, दोहा से शुरुआत होगी। एंड तो अगर आपको थ्रिल और वर्ल्ड क्लास मार्शल आर्ट्स पसंद है, बॉक्सिंग पसंद है, किक बॉक्सिंग पसंद है, ये सब चीज़ें अगर आपको पसंद है ना, तो आप इस एक्शन को मिस नहीं कर सकते हैं, और तैयार हो जाइए क्योंकि एक्शन की कहानी अभी शुरू हुई है। बस बस बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 पे।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना। हाँ
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: कच्चा? अच्छा
2: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस में लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा तू?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: ओ भाई जोश है फुल हाई, और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। बैक टू बैक
7: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
8: 89.6
4: FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: एक बुजुर्ग ने ना कभी बहुत खूबसूरत सी बात कही थी, रिश्तों को मजबूत रखना है तो सिर्फ एक ही टेबल पर काम मत करो, कभी एक ही ग्राउंड पर खेलो भी। और शायद इसी बात को सच करने एक खूबसूरत कोशिश की है मिनिस्ट्री ऑफ अवकाफ ने एंड इस्लामिक अफेयर्स ने। सोचिए आप पूरा हफ्ता अपनी फाइल्स, मीटिंग्स एंड डेडलाइंस के बीच में मिलते हैं, और वही जब सैटरडे को स्पोर्ट्स शूज पहनकर एक दूसरे को कहते हैं कि आज टारगेट नहीं, बस एक और लैब कंप्लीट करनी है। इसी सोच के साथ 25 जुलाई से 22 अगस्त तक शुरू हो गया है समर सैटरडे स्पोर्ट्स फोरम। हर सैटरडे सुबह कूल ऑफ आवर विद योर कलीग्स किया जाएगा और शाम को किया जाएगा स्पोर्ट्स फोरम चैंपियन। क्योंकि ऑफिस में सिर्फ अच्छे कलीग्स बनाना ही काफी नहीं होता, कभी कभी उनके साथ हंसी, स्पोर्ट्स और यादें शेयर करना भी इतना ही जरूरी होता है। और शायद इसी का ही नाम है एक हेल्दी वर्क प्लेस और एक हेल्दी लाइफ। बस इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
6: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
5: योर स्पेशल ऑफर?
6: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
5: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
6: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
5: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: देखिए, बच्चों का समर वेकेशन खत्म होने को अभी समय है, लेकिन समुद्र में चलने वाले शिप्स का ना समर वेकेशन अब खत्म हो चुका है। बस थोड़ा सा पॉज मारते ही अब बारी आ चुकी है वापस काम पे लगने की। तो भाई कतर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है 26 जुलाई संडे की सुबह से सभी मर्चेंट वेसल्स और कमर्शियल शिप्स फिर से अपनी ड्यूटी पर लौट आएंगी। बस एक कंडीशन है कि कोई भी शिप बिना अपनी सेफ्टी चेकअप किए नहीं चला सकती है अपनी शिप। तो बस हर वेसल को सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी इक्विपमेंट ऑन बोर्ड रखने होंगे और मैरीटाइम जो उनके रूल्स हैं वो फॉलो करने होंगे। तो बस कहानी का मॉरल सिंपल है यार, कि चाहे ऑफिस हो, चाहे रोड हो, चाहे समुद्र हो, सेफ्टी चेक पहले है, एडवेंचर बाद में। जी हाँ, अगर आप भी सोच रहे थे कि भाई थोड़ा सा शिप में घूम लें, अपनी यॉट निकाल लें, तो अभी यॉट निकालने का बारी आ चुकी। तो बस मेरे साथ बने रहिए फॉर मोर अपडेट्स ओनली ऑन 89.6 में शिवा। इट्स हॉट
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
2: हाँ, लगता ही है। He's the kind of director, as an actor you have to really trust him. क्योंकि his ideas come from where you never understand. And if you start justifying it, जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि you know, तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी. But you have to trust him.
1: ये थी प्रियंका चोपड़ा talking about विशाल भारद्वाज on Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boulder. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
3: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
4: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ.
3: अभी कॉल करें 3100813.
5: नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
6: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

कह लेते हैं कुछ पैसे की बात। एक अतरी रियाल इंटू इंडियन रुपीज इज 26.45, एक अतरी रियाल इंटू श्रीलंकन रुपीज इज 92.14, एक अतरी रियाल इंटू पाकिस्तानी रुपीज इज 76.33, एक अतरी रियाल इंटू नेपाली रुपीज इज 42.27, एक अतरी रियाल इंटू बांग्लादेशी टका इज 33.97। घर पे भेजिए पैसे, ढेरों सारी खुशियां।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi Studio Clock का टाइम शाम के 6 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार.
2: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center. Hi.

शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का। इट्स हॉट शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

पर जब मेरी शादी हुई ना तो एक रस्म होती है हमारी शादी में कि जब लड़की को स्टेज पे बिठाया जाता है और बहुत सारी लेडीज आती हैं और श्रृंगार का सारा सामान उसकी गोद में रखती हैं एंड पैसे रखती हैं, मेकअप का सामान रखती हैं और जो चुन्नी होती है उसको सिर पर चढ़ा के मुंह मीठा करवाया जाता है। और आपको पता है उसको मुंह मीठा किससे करवाया जाता है? शवारे से। शवारे मतलब ड्राई डेट से। और ये ट्रेडिशन जो है ना श्वारा खिलाने का, ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि कहा जाता है कि वो जो ड्राई श्वारा है अगर दुल्हन ने या दुल्हे ने खाया और अगर उसके बाद कोई और उसका वो जूठा खाता है तो उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, ऐसी मान्यता है। बाकी होता क्या है ये नहीं पता, लेकिन हाँ उसको ही खिलाया जाता है जिसका नेक्स्ट नंबर होता है। कुछ ट्रेडिशंस जो होते हैं ना बड़े ही फनी होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं। पर याशवारे से मुझे याद आया कि ये ड्राई डेट्स बहुत अमेजिंग होती हैं। हम बचपन में बहुत खाते थे, लेकिन हाँ

ये सारी फार्मिंग होती है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी न्यू. अगर आप जाएंगे तो आपको और मजा आएगा. बाकी ऐसे ही मजेदार बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा. स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Mirci.
1: Iscaba la puscaba la sacabana. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirci, murga.
3: ¿Aló? ¿Aló?
4: Sir, very good evening, man. Bank to put
3: बोलिए
4: सर, I'm so sorry sir, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात है
4: सर, आप तो सर पूरा बता रहे
3: क्या करो भैया, कहाँ
4: क्या हो गया सर? आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो,
4: आई एम सो सॉरी सर। सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
3: पागल पागल है,
4: अब तो देने पड़ेंगे सर।
3: हेलो,
4: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे।
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर, से बोल रहा हूँ। तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
3: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? पैसे देने पड़ेंगे, पैसे?
4: अब तो फंस गए सर।
3: हेलो
5: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
3: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
5: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
3: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
5: जी? अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on Mirchi. It's hot.
7: Yep, yeah.
8: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
9: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
10: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
11: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
12: कम है के?
13: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
14: 89.6
15: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

बार एक छोटा सा बीज हवा के साथ उड़ते उड़ते पत्थर के पास गिर गया और उसने सोचा कि यहाँ से तो मैं कभी भी बड़ा पेड़ नहीं बन पाऊंगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। रोज थोड़ा थोड़ा पानी मिला, धूप मिली और धीरे धीरे उसने पत्थर की छोटी सी दरार में अपनी जगह बना ली। कुछ सालों बाद वही छोटा सा बीज एक मजबूत पेड़ बन चुका था। कहने का मतलब यही है कि कोई भी परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार मत करो, जहां हो वहीं से अपनी शुरुआत करो, क्योंकि हिम्मत और कंसिस्टेंसी मुश्किल से मुश्किल जगह को भी सक्सेस की कहानी बना देती है। बस इसी के साथ सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिस शीशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: आजकल के बच्चे ना बड़े ही लकी हैं, उनको ऐसा मौका मिल रहा है इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें देखने का। हमारे टाइम पे क्या होता था, एक अंकल आते थे, झूले को ऐसे खुद ही हाथ से घुमाते थे और हम वो झूल के खुश हो जाते थे। लेकिन आपके जो बच्चे हैं ना, उनको आप बुद्धू नहीं बना सकते, उनको आप इतने इंटेलिजेंट है ना, उनको आप घुमा नहीं सकते, लेकिन वो हमें घुमा सकते हैं उल्टा। और उनके लिए ना वैसे ही इवेंट्स हैं, ऐसे इवेंट्स हैं कि उनकी पर्सनालिटी वो सूट करते हैं। तो अभी ये एक इवेंट बता रही हूँ ना आपको, जो है द कलर वर्स एक्सपीरियंस, जो एक इंटरैक्टिव फैमिली फोकस्ड एंटरटेनमेंट है। एंड ये अट्रैक्शन रोज हो रहा है, 15 जुलाई से ये शुरू हो चुका है एंड 15 सितंबर तक रहेगा, कतारा कल्चरल विलेज में, साउथ पार्किंग में। एंड ये डेवलप किया गया है इन पार्टनरशिप विद स्पेस टून, जो एक मल्टी सेंसरी इंडोर अट्रैक्शन विजिटर्स के लिए क्रिएट करती है। एंड ये बड़ा वाइज डिसीजन है इस टाइम, क्योंकि बहुत ही गर्मी है बाहर और इस दौरान हम इंडोर एक्टिविटीज ही सोचते हैं बच्चों के लिए। ये बहुत ही वाइज डिसीजन है, बच्चों के साथ जाइए, इंजॉय करिए। एंड बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, एंड बच्चा भी इंजॉय करेगा, आप भी इंजॉय करेंगे, बस जाइए और इंजॉय करिए। स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1.7।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद। इरशाद

0: आईपे पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपे सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपे ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपे, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: दोस्ती का उसूल है मैडम. नो सॉरी, नो थैंक यू.
2: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

वो सीन तो आपको अभी भी याद होगा जब ऐश्वर्या राय अपनी साड़ी के पल्लू को हवा में लहराती हुई भागती हुई अपने नंगे पैरों को लेकर पूरी हवेली में चीखती हुई देवा देवा देवा

0: ये सिर्फ एक ट्रेजिक एंडिंग नहीं थी, ये उस जमाने की सोशल रिस्ट्रिक्शंस थी, ईगो थी, फैमिली प्रेशर था और अधूरे प्यार की कहानी थी। देवदास और पारो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वक्त, हालात और फैसलों ने उन्हें कभी भी एक होने नहीं दिया। इस एंडिंग का सबसे गहरा मैसेज यही है कि कभी कभी प्यार की कमी नहीं होती, हिम्मत की कमी होती है, ईगो और देर सब कुछ छीन लेती है, और जब तक एहसास होता है ना, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि दरवाजे सिर्फ लकड़ियों के नहीं होते, दरवाजे उन बड़ी पीड़ाओं के होते हैं, नफरत के होते हैं, जो हम कभी नहीं खोल सकते।
1: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: Hollywood, Bollywood, Bolder. Only on Mirchi. It's hot.
1: Janelia Deshmukh.
2: Are you an honest critic?
3: I'm an honest critic, but I'm also good for your ego.
2: Are kya baat hai?
3: No, like even if you're my friend, I mean,
2: मुझे validate कर ले यार. Hello, Janelia. I'm not feeling great.
3: अरे honest हूँ मैं.
2: You're a queen. Where's your crown?
1: She's an honest critic, but a very funny person also. ये थी Janelia Deshmukh on Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
4: Hello, Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं
5: office के toilet में toilet paper white नहीं yellow लगाओ, profit आएगा.
4: relative से advice slow तो कहते हैं
6: काम को time दो, 25 घंटे काम करो, dark circles होंगे तो future bright होगा.
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ promotion fund के लिए, जिसके लिए आप 50% equity ले सकते हो. भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
7: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070 7687.

0: चेयरमैन
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन बता बेटा सवाल क्या है
0: यार एक बार मुझे समझाती नहीं है कोई भी मूवी डाउनलोड करो प्रिंट हमेशा खराब निकलती है क्या करूं
1: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है तो तू प्रिंटर बदल देना
2: मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हल्का हंस

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 7 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल,
1: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तबाही।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। इस जंगल बुक के गाने को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना? कितना ही फेमस था बचपन में ये, जैसे ही कहीं बजता था हम दौड़ के आ जाते थे कि बस अब शुरू हो गया जंगल बुक, बैठ जाओ। और अब मैं अपने सोफे से या बेड से नहीं उठने वाला, ये देख के ही उठूंगा, यही होता था ना हमारे साथ। तो अगर आपको अब ऐसा एक जंगल वाला एक्सपीरियंस लेना है तो आपके कतर में होने जा रहा है इंटू द जंगल शो। जी हाँ, 23 जुलाई से 1 अगस्त तक होने जा रहा है। इट इज़ एन इमर्सिव फॉरेस्ट एक्सपीरियंस जहाँ पे आप देखेंगे इतने ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स में जो वो परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, लाइव परफॉर्मेंसेज हैं, उसके अलावा जंगल के जो कैरेक्टर्स हैं वो इतना खूबसूरत तरीके से आपको स्टेज शो करके दिखाएंगे। एंड इट्स अ थियोरेटिकल पपेट्री हो रही है, डायनेमिक डांसेस हैं, थ्रिलिंग आपको सर्कस इंस्पायर्ड एक्ट्स मिलेंगे, भाई और क्या चाहिए। सारी कलाकारियां आपको देखने को मिलेंगी वहां पे। भाई करना क्या है, जाना है, आप जा सकते हैं ओएसिस स्टेज मॉल ऑफ कतर में 23 जुलाई से ये 1 अगस्त तक है। 5:30 PM शुरू हो जाएगा, 7 PM भी टाइम है इसका और 8:30 PM भी इसका टाइम है। प्राइस इज फ्री, यस इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गो एंड एंजॉय विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कितना ब्यूटीफुल है ना कि एक एक्ट ऐसा देखने आप स्टेज पे जा रहे हो विद अ लॉट ऑफ एफर्ट बाय देम, तो जरूर देखने जाना चाहिए यार, एटलीस्ट यू नो फॉर देम हु इज एन आर्टिस्ट, जो शो कर रहे हैं अपनी आर्टिस्ट्री इन अ ब्यूटीफुल वे। तो जरूर जाइएगा और एंजॉय करिएगा इस इवेंट को एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। मिर्ची फ्रेश माल।
0: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो,
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो, और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस,
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये,
2: क्या मजाक चल रही है,
3: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात, और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस,
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये,
2: क्या मजाक चल रही है,
3: क्या मजाक चल रहा है ये? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके?

0: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कुकड़ू।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
3: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
2: क्यों, वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
3: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
2: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
3: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार्स, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
2: मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस?
3: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
2: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग। लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
5: 89.6
6: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: देखिए बच्चों का समर वेकेशन खत्म होने को अभी समय है, लेकिन समुद्र में चलने वाले शिप्स का ना समर वेकेशन अब खत्म हो चुका है। बस थोड़ा सा पॉज मारते ही अब बारी आ चुकी है वापस काम पे लगने की। तो भाई कतर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है 26 जुलाई संडे की सुबह से सभी मर्चेंट वेसल्स और कमर्शियल शिप्स फिर से अपनी ड्यूटी पर लौट आएंगी। बस एक कंडीशन है कि कोई भी शिप बिना अपनी सेफ्टी चेकअप किए नहीं चला सकती है अपनी शिप। तो बस हर वेसल को सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी इक्विपमेंट ऑन बोर्ड रखने होंगे और मैरीटाइम जो उनके रूल्स हैं वो फॉलो करने होंगे। तो बस कहानी का मॉरल सिंपल है यार कि चाहे ऑफिस हो, चाहे रोड हो, चाहे समुद्र हो, सेफ्टी चेक पहले है, एडवेंचर बाद में। जी हाँ, अगर आप भी सोच रहे थे कि भाई थोड़ा सा शिप में घूम लें, अपनी यॉट निकाल लें, तो अभी यॉट निकालने का बारी आ चुकी। तो बस मेरे साथ बने रहिए फॉर मोर अपडेट्स ओनली ऑन 89.6 में शिवा।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1।

चांद मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए

0: अरे अरे अरे अरे, मैं बस जाने वाली थी, बट मैंने कहा शायद आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है बतानी बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप टॉय फेस्टिवल नहीं गए हो ना अभी तक, तो बस चंद दिन रह गए हैं। और ये टॉय फेस्टिवल ना हर साल एक बार आता है और एक महीने के लिए आता है, तो बेहतर है कि अगर आप नहीं गए हैं, बच्चों को अपना बचपना और अच्छे से व्यतीत करने का ये जो मौका मिलता है ना, वो बड़ा ही मज़ेदार है। क्योंकि हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ होता नहीं था, हम लोगों को तो हमारे मम्मी पापा ले जाते थे मेला देखने, और हम बस वही झूलों में दो झूले गिन के होते थे, हमारे नाम ये वो करके हम उसमें ही खुश हो जाते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए आता है बना बनाया प्लान, चाहे वो कोई कार्टून कैरेक्टर हो, चाहे वो कोई प्लेइंग एरिया हो, चाहे वो तरह तरह के कुछ टास्क हो, ये सब चीजें आती हैं आजकल के बच्चों के लिए। तो अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो 31st तक ही है ये, जल्दी से बच्चों को लेके जाइए और एंजॉय करिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स अ
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
2: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ, ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे वो सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
1: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वाज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Boldal Bollywood Bollywood Bollywood Boldal Only on Mirchi It's Hot
3: Our business is our business None of your business
4: Par didi our entertainment is your entertainment Entertainment
5: Qatar ka number 1 radio station
6: 89.6 89.6 89.6 FM Mirchi 1
7: It's hot.

रखना, हाँ जी दुआओं में याद रखना, क्योंकि अब मेरा समय हो चुका है जाने का। आपके साथ वक्त का ना पता ही नहीं चलता। उम्मीद है कि आज की बातें, गाने और थोड़ी सी मस्ती आपकी शाम को और भी खूबसूरत बना गई हो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। मैं हूँ ईशा, लेती हूँ आपसे इजाजत। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगी कल दोबारा से। और याद रखिए, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी स्टेशन पर। और तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। टाटा बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन एट्स।

0: Mix. Mirchi.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: Yes, of course, Mirchi Helpline. बोलिए.
1: मेरी पार्किंग में मेरा पड़ोसी गाड़ी पार्क कर देता है. क्या करूं?
2: What क्या करूं? It's simple, bro. Thank you, बोल उसको. Thank you. Free valet service दे रहा है यार वो.
3: साले का खोपड़ी तोड़ दे. खोपड़ी

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
3: Ghana Indie Top 10.
4: Kanika ke saath on Mirchi.
5: तारीखें भूल जाती हैं, नाम भूल जाते हैं, पर कुछ गाने हमें एक पूरा जमाना याद दिला देते हैं. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. ये वो शो है जहां हफ्ते के हॉटेस्ट टॉप 10 इंडिपेंडेंट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है. सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, जसलीन रॉयल बादशाह का गाना इनाम. पिछले हफ्ते से दो पोजिशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक और नंबर 10. उसके बाद नई नवेली एंट्री, जारा खान स्केल्स का गाना. गाने का नाम है मूव बॉडी. इस गाने ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 9 एंड इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
6: नंबर 9.

0: ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी, और नई नवेली एंट्री डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। गाने आर्ट एक तरह से एक टिकट होते हैं टू अ मेमोरी, एंड सम ऑफ द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माय लाइफ आर ऑफ दोस कॉलेज डेज। ये बात कभी सोची है कि जब हम उस उम्र में थे जब कुछ ज्यादा पता नहीं था तो हम सबसे बहादुर थे। उस उम्र में जो भी बनाया, जो भी सपने देखे, जो भी लिखा, आधा अधूरा या पूरा, उसमें एक चीज थी जो अब बाद में हम कहीं खो देते हैं, एंड दैट इज होप। वो हमारी जिंदगी का सबसे रॉ फेज होता है, जब हम ओवर कैलकुलेटिव नहीं होते कि इससे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, करियर बनेगा या नहीं, बस दिल में कुछ था और लिख दिया। एंड दैट्स व्हाई इन द म्यूजिक स्पेस एज वेल, अगर आप देखेंगे सम ऑफ द बिगेस्ट पॉप स्टार्स जो हमने देखे हैं इन द लास्ट 4-5 ईयर्स हैव बीन दीज यंग गन्स। बिली आइलिश द ग्लोबल आइकॉन का एग्जाम्पल ले लो, उनका गाना ओशन आइज तब फटा जब वो सिर्फ 18 साल की थी। हमारी अपनी जीनी जो देहरादून से है अब मुंबई में गाने बनाती हैं, उनके गाने लाइक सुकून, आशियाना, वो जनता के साथ कनेक्ट इसलिए ज्यादा करे बिकॉज उसकी राइटिंग बहुत ऑनेस्ट थी। तो ये ऑनेस्टी और ये रॉनेस कोई टेक्निक नहीं है या कोई हिम्मत नहीं है, ये आई थिंक सोचने की हिम्मत है जो कहीं ना कहीं आई रियली फील वो उम्र अलाउ करती है। पर असली सवाल तो ये है कि जब हम कभी ये हिम्मत खो देते हैं तो क्या वो वापस मिल सकती है, क्या हम जीरो पे आके वापस शुरू कर सकते हैं। एक आर्टिस्ट है लखनऊ से जिनका एक गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है, गाने का नाम है तारे, आर्टिस्ट का नाम है फरक, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट सॉन्ग्स जो जनता के दिल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक लाइन है जो आपको रोक देगी, वो कहता है परिंदा पिंजरे में इतने दिन रहा कि अब आसमान से ही डर लगता है। देयर सो मच टू टॉक अबाउट दिस सॉन्ग बट आई विल लेट यू सिट विद इट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे। इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10 एज आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। एंजॉय।

0: Blana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's hot
1: Mirchi
2: Iska bana uska bana sakka bana
3: Ya bana
2: Murga murga Naveed wala murga
3: Mirchi murga
4: Hello
5: Suman ji good evening इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ आपका नेट काम नहीं कर रहा था आपने कंप्लेन करी है
4: हाँ जी हाँ जी
5: आप अभी इंटरनेट के पास हैं कंप्यूटर के पास हैं
4: एक सेकंड आप प्लीज होल्ड करेंगे मैं
5: होल्ड कर रहा हूँ
4: हाँ जी हेलो
5: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप
4: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है
5: सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ
4: सुमन शर्मा दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है बस इसमें गूगल खुल जाते हैं तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें
5: वो सारी चीजें हो जाएगी आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ फुल एड्रेस
4: है 3rd K 5/14A 1st floor तो इंटरनेट चलता नहीं है ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा
5: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको
4: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों
5: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना इसलिए हम वही मतलब कंफर्म
4: मेरा सनशाइन कैंसिल प्रॉब्लम क्यों हो रही है मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला
5: वो ठीक हो जाएगा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम
4: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
5: मैडम ये इंटरनेट का कनेक्शन है आप मेरे को क्यों बता रहे हो ब्लड ग्रुप बताइए
4: बी पॉजिटिव दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है बाकी तो चला ही नहीं
5: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ
4: राहुल शर्मा और ये ठीक कैसे होगा मुझे बता दो
5: वही तो मैं आप लिखी हुई है ना इसलिए हम वही मतलब कंफर्म
4: मेरा सनशाइन कैंसर है प्रॉब्लम क्यों हो रही है मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला
5: वो ठीक हो जाएगा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम
4: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
5: मैडम ये इंटरनेट का कनेक्शन है आप मेरे को क्यों बता रहे हो ब्लड ग्रुप बताइए
4: बी पॉजिटिव दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है बाकी तो चला ही नहीं
5: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ
4: राहुल शर्मा और ये ठीक कैसे होगा मुझे बता दो
5: मैं आपको अरे मैडम
4: डिटेल

0: अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
1: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया, रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप
2: नहीं
0: दोबारा कॉल करेंगे, आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: यार बजट टाइट है, शॉपिंग कैसे करें?
5: बजट टाइट तो लुलू फैशन स्टोर चलो।
4: क्यों, वहाँ क्या मैजिक हो रहा है?
5: मैजिक नहीं, हाफ पे बैक।
4: ओहो, एक्सप्लेन करो जरा।
5: सिंपल रेडीमेड गार्मेंट, साड़ीज, चूड़ीदार्स, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज पे हाफ पे बैक।
4: मतलब 200 की शॉपिंग पे 100 वापस?
5: बिल्कुल, और वाउचर रिडीम भी इन्हीं कैटेगरीज में कर सकते हो।
4: ये हुई ना स्मार्ट शॉपिंग, लुलू फैशन स्टोर, हाफ पे बैक, शॉपिंग का स्मार्ट तरीका। स्पेंड QAR 200 एंड गेट QAR 100 फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली। लुलू फैशन स्टोर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लुलू, व्हेन द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
9: गाना इंडी टॉप 10
10: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
11: नंबर 7। हो चुप कर लंग

0: कैश किंग की आवाज में एक गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने हर्ष नुसी की आवाज में उन्हीं की लिरिक्स सुनी की कॉम्पोजिशन वाला गाना सुना, गाने का नाम साडी सुन ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। म्यूजिक आर्ट है, आर्ट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, एंड एक म्यूजिक का फॉर्म जो सबसे ट्रू है इन द वे इट एक्सप्रेसेस इज हिप हॉप। ये जॉनरा ना किसी स्टूडियो में पैदा नहीं हुआ था, ये वहां से आया है जहाँ लोगों को माइक नहीं दिया जाता था लेकिन दिल में कहानियां बहुत हैं, जहाँ तकलीफ कोई सुन नहीं रहा है तो एक्सप्रेशन म्यूजिक बन गया। हर कंट्री का, सिटी का, एरिया का रैप का फॉर्म अलग होता है, कॉज वहां से जुड़ी कहानियां अलग होती है। दिल्ली हिप हॉप अलग है, मुंबई हिप हॉप अलग है, केरला का हिप हॉप बहुत अलग है, पर व्हाट्स कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज फॉर्म्स इज द रियलिटी एंड एक्सप्रेशन ऑफ द आर्टिस्ट। पर कहीं ना कहीं इस पूरे मूवमेंट के पोस्टर बॉय रहे हैं डिवाइन, जिनका असली नाम विवियन फर्नांडिस है। बहुत सारे लोगों को लगता है दैट गली बॉय जो मूवी बनी थी वो उनकी लाइफ पे बेस्ड थी, दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। उन्होंने उस मूवी में कंसल्ट किया था, बहुत हेल्प करी थी, उनका म्यूजिक है बट वो उनके बारे में नहीं है। बट देयर आर सॉन्ग्स लाइक मेरी गली में जो पूरे देश ने पहली बार सुना ऑन अ बिगर लेवल, कॉज वो गली बॉय जैसी मूवी में आया। पर उसी साउंड ट्रैक में एक गाना था कॉल्ड आजादी। इस गाने के प्रोड्यूसर है डब शर्मा, जो चंडीगढ़ का एक लड़का है जिन्होंने अपने कमरे में बैठकर ये कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, किसी फिल्म के लिए नहीं, किसी ऑडियंस के लिए नहीं, बस अपने लिए। एंड द सॉन्ग समहाउ मेड इट टू अंकुर तिवारी, जो उस वक्त गली बॉय की म्यूजिक को सुपरवाइज कर रहे थे। एक मेल गया, एक मीटिंग हुई, एंड दैट सॉन्ग मेड इट टू द बिगेस्ट मूवी अबाउट एक्चुअल हिप हॉप। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज हैज कम आउट ऑफ द कल्चर। डब शर्मा डिवाइन का गाना, गाने का नाम है आजादी, हर बार सुन के गूज़बम्स आ जाते हैं। गाना इंडी टॉप 10 पर, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

0: ये गाना सुनने के बाद हाथ अपने आप सर पे चला जाता है. मैड रिस्पेक्ट टू डिवाइन फॉर दिस सॉन्ग, वन ऑफ द टॉप 5 सॉन्ग्स इन देसी हिप हॉप. एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड क्विकली इस इंडी पॉप क्विज का आंसर करो. डिवाइन एंड करण औजला ने एक कोलैब करके एक एल्बम रिलीज करी थी आज से 2 साल पहले. जल्दी बताओ उस एल्बम का नाम क्या है. काउंटडाउन का अगले वाला गाना अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 7 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: Na, Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार. तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया.
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है. और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी.
0: मिर्ची, इट्स हॉट. अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
5: आएंगे दीदी.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
0: FM मिर्ची 1. It's hot. इंडी टॉप 10
5: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
7: नंबर 4.

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां की आवाज में गाने का नाम है ए अजनबी।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। कुछ गाने इस हफ्ते हॉट होते हैं, अगले हफ्ते नहीं, बट कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं एक एड्रेस बन जाते हैं हमारे लिए, एड्रेस टू अ मेमोरी, अ ट्रिप टू नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहां पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है दीवाना।
0: एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

गाने का नाम है मायरी, साल 2000, एल्बम फिर धूम पलाश से इनकी आवाज में। जरा याद कीजिए यार वो जमाना, कैसेट की रील पेंसिल से घुमाना, इंतजार करते रहना कि मेरे वाला गाना आएगा। आई रिमेम्बर आई वॉज ऑब्वियसली इन स्कूल जब मैंने गाना सुनना शुरू किया था, बहुत अच्छी धुन लगती थी। एंड दैट लाइन, दैट बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलके मायरी, शायद मैं इतनी छोटी थी दैट मैंने उसका मतलब ही नहीं समझा, एंड मैं बस बहुत इतराती थी ये गाना सुन के, सजती थी, सवरती थी। एंड एज वी कीप ग्रोइंग अप वो गाने समझ में आने

सकते हैं, उनके पीछे के मतलब बदलते जाते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे मायरी में वो अपनी माँ से ये कहानी बता रहे हैं ये भी नहीं समझ में आया था, लेकिन नाउ इट ऑल साउंड्स सो ब्यूटिफुल दैट वो जिस लड़की की तारीफें कर रहे हैं, जिस लड़की के बारे में बता रहे हैं, जिसकी याद उन्हें आ रही है, वो अपनी माँ को बता रहे हैं। पर यही तो बात है, गाना नहीं बदला यार, हम बदल गए। गाना 1998 में बना था, फ्रंट मैन पलाश सेन की आवाज, यूफोरिया द बैंड, जिसने आज भी ऑलमोस्ट आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कभी कोई फिल्म का गाना नहीं किया। द रियल ओजी पोस्टर बॉयज ऑफ पॉप म्यूजिक, अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, यूफोरिया द बैंड का गाना, गाने का नाम है मायरी, इज योर टिकट टू नॉस्टैल्जिया टुडे ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

आई स्वेयर गाने आर लाइक मेमोरीज जो हमें ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. आई वॉज टेकन बैक टू माई चाइल्ड हुड होम बाई लिसनिंग टू दिस सॉन्ग. पलाश सेन की आवाज में यूफोरिया द बैंड का गाना मायरी स्टिल हिट्स होम एग्जैक्टली हाउ इट यूज टू 10 ईयर्स बैक और 20 ईयर्स बैक. And that's why it's a classic. At RJ Kanega on Instagram par aao, koi bhi gaana from the 90s, 2000s, jo aaj bhi aapko lagta hai, it hits home, buddy. Mujhse aage share karo. Main aur Ashka hai, my sound producer. Hum aapke recommendations ko bahut seriously lete hain. We might feature your song next week. Now back to the countdown. Agle wale gaane ki bari. Gaane ka naam hai Dealer. Diljit Dosanjh ki awaaz, unhi ki composition. 18 hafton se is countdown par barkarar. Dealer is playing right next for you on Gaana number 3. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 3.

0: Blana Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: जेनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
5: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
6: अलार्म लगा है। ओह गॉड, हेलो जेनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
5: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
4: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जेनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल्डाल। बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल।
3: ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
8: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
9: बार बार।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
10: 89.6
11: 89.6 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: गाना इंडी टॉप 10
1: कनिका के साथ
0: On Mirchi.
4: Mirchi सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री थी, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक था। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, लेकिन एक क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। जसलीन रॉयल बादशाह का गाना इनाम वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। फिर एक नई नवेली एंट्री, जारा खान स्केल्स का गाना मूव बॉडी ऑन गाना नंबर 9। संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 8। हर्ष नुसी का साड़ी सुन पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके इस हफ्ते था ऑन गाना नंबर 7। ऐश किंग का किनिया सोनी गोइंग स्ट्रॉन्ग ऑन गाना नंबर 6। इन ऑल ऑनेस्टी ये गाना इस काउंटडाउन का मेरा फेवरेट गाना।

अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी ऑन गाना नंबर 5। आदित्य निखारी रैबिट और कुटले खा का ए अजनबी अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत दोसांझ का डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। The top two songs of the week, yet again, वही शफल हो रहा है ऊपर नीचे 17 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन, दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रॉर का गाना, मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा की आवाज में, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते नंबर 2 पर था, एक पोजीशन ऊपर जंप करके इस हफ्ते शीशा इज ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

0: Indie Top 10. Kani ka kasat on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
1: मुझे लंबे नाखून पसंद है, पर मैं हमेशा उन्हें चबा लेती हूँ, क्या करूँ?
2: अरे चबा के खाना तो अच्छी बात है, कीप इट अप। और चाहिए तो ब्यूटी पार्लर चली जा, बहुत वैरायटी है उनके पास।
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी।

0: मनोज कुमार जी, इनकी इमेज थोड़ी ऐसी सीरियस टाइप की थी कि ये पेट्रियोटिक मूवीज बनाते हैं, सोशल इश्यूज पर मूवीज बनाते हैं, लेकिन थे बड़े मजेदार से इंसान। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार एक इंटरव्यू में जब उनकी काफी उम्र हो गई थी, उनसे पूछा गया था कि भाई सारी उम्र आपने काम किया, अब आप आराम कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: बचपन में टीचर्स ने क्लास में खड़ा रखा, फिर फिल्में देखते थे तो लाइन में खड़े रहते थे, फिर स्टूडियो जाते थे तो गेट कीपर लाइन में खड़ा रखता था। उन दिनों डायरेक्टर्स की बड़ी इज्जत होती थी, तो डायरेक्टर बैठे हो तो खड़े रहिए, तो बैठने का मौका मिला तो इस उम्र, वरना खड़े ही रहे।
0: क्या ही बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, मनोज कुमार साहब पर ही पिक्चराइज्ड ये गाना सुन लेते हैं उनकी फिल्म का मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
4: हाँ बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: कच्चा? अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो सही रेट पे आपको। की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना। हाँ
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: कच्चा? अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ

0: मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
1: सोडा जो खाने
0: सोडा, हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना, खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
1: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
0: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
1: मतलब उसको पकाऊं?
0: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
1: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
0: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है?
1: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
0: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
1: चल जाएगी?
0: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
1: अबे कौन बोल रहा तू?
0: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
1: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
3: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
4: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
5: दोनों मिलेगा। उत्तराखंड
6: का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।
8: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मनोज कुमार जी के ग्रोइंग अप ईयर्स दिल्ली में गुजरे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: वो तो दिल्ली थी, फिल्मों का शौक, क्रिकेट और हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं लेकिन दिल्ली में जाना जाता था। प्रेमिका भी हुई जिंदगी में, 5 साल तक दिल्ली में उसके साथ सिनेमा भी देखते। बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ब्याह भी उसी से हुआ, बच्चे भी उसी से हुए।
0: वैसे इनका असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था, ये मनोज कुमार कैसे इन्होंने रख लिया?
1: एक फिल्म देखी थी शबनम फिल्मिस्तान की, उसमें हीरो का नाम मनोज था। मनोज नॉर्थ इंडिया में नाम नहीं था, नया नाम लगा। मैंने उस वक्त सोचा था जब फरिश्ता बनूंगा तो यही नाम रखूंगा, तब भी फरिश्ते का मुझे नहीं मालूम था, तो उसकी शाबाश मैं अपने बचपन को देता हूँ।
0: ये फरिश्ता बनने की क्या स्टोरी है सुनते हैं थोड़ी देर के बाद। राइट हियर, मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. Mirchi
1: Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार. तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया.
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है. और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी.
0: मिर्ची, इट्स हॉट.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

0: 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: मनोज कुमार जी फिल्मी दुनिया में आके एक्टर नहीं फरिश्ता बनना चाहते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या स्टोरी शेयर की थी।
1: हाँ जी, एक्चुअली मैंने फिल्म जुगनू देखी थी, मुझे पता ही नहीं था सिनेमा क्या होता है। उसमें जो पात्र थे वो उनकी डेथ हो जाती है, फिर दूसरी फिल्म मामू ने शहीद दिखाई, उसमें भी वही दिलीप कुमार साहब थे, उसमें भी डेथ हो जाती है। मैंने रात सो नहीं रहा था तो माँ ने पूछा क्यों सो नहीं रहे। मैंने कहा बीजी आदमी कितनी बार मरता है। कहा एक बार। मैंने कहा जो दो तीन बार मरे। कहने को फरिश्ता हुआ। मैंने करवट लेकर सोचा कि मैं फरिश्ता बनूंगा। दानत मुझे पता नहीं था फरिश्ता होता क्या। जब पता लगा तो बड़ी शर्म आई अपने आप पे। फरिश्ता सोचे साले तू शैतान है, फरिश्ता बस वो चिंगारी थी।
0: बस इसी चिंगारी से इन्होंने आग पकड़ ली और अपना एक ब्रिलियंट फिल्मी करियर बनाया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
4: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगैन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
5: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था, हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
3: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
7: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुराने जमाने में अक्सर फिल्मों में काम करने के लिए लोग अपने घर से भाग आते थे क्योंकि घर वाले तो इसकी इजाजत नहीं देते थे। तब फिल्मी प्रोफेशन को अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में मनोज कुमार जी ने फिल्मों में काम करने का जो उनको शौक था और घर से जब वो आए दिल्ली से बॉम्बे, इसके बारे में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। ये चिंगारी 10 साल की एज में लगी, अंदर ही अंदर खोलती रही और फिर ऊपर वाला मेहरबान था। मेरे वालदैन माता पिता मर्यादा और संस्कारी थे, लेकिन लकीर के फकीर में उन्हें अपने खून पे भरोसा था, तो मैं उनकी आज्ञा के साथ आया, मैं घर से भाग के नहीं आया। फिर 1956 में मैं 9 अक्टूबर को मुंबई आया
0: और 1957 में फैशन नाम की फिल्म में उनको एक छोटा सा रोल भी मिल गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
2: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूं?
1: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: 1956 में जब मनोज कुमार जी दिल्ली से बॉम्बे आए तो उनको स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रगल नहीं जिसका जिक्र अक्सर दूसरे एक्टर्स करते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: चाचा चाची यहीं थे, हमारा यूनाइटेड फैमिली है, घर में रहने की कोई तकलीफ नहीं थी, खाने की कोई तकलीफ नहीं थी। चाचा मेरे बड़े बहुत सपोर्ट थे, चाची मेरी दोस्त भी थी और माँ भी थी। लेकिन ऐसा वक्त आया था कि ट्रेन मिस हो जाए तो प्लेटफॉर्म पे भी सोया, पुलिस ने डंडा भी मारा। कुछ दिनों के लिए वो बाहर गए, मकान बंद हो गया तो लॉन्ड्री में भी सोया, ईरानी होटल में भी सोया और हर दुकान पे अपना उधार रहता। उनको मेरी शक्ल देख के लगता था कि आदमी ईमानदार है।
0: भाई रोटी कपड़ा मकान की सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नबीज वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो हेलो
4: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ।
3: हाँ बोलिए
4: सर। आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात
4: सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया।
4: बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात
4: सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी

0: सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
1: पागल पागल है,
0: अब तो देने पड़ेंगे सर।
1: हेलो,
0: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे।
1: कौन बोल रहा है, विपिन?
0: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
1: पागल है, दिमाग खराब है क्या तेरा? पैसे देने पड़ेंगे,
0: अब तो फंस गए सर।
1: हेलो
2: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है।
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
2: जी? अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ये पटा
4: हाउस ऑफ जोश,
5: हाय सर,
4: हाउस ऑफ जोश,
5: हाय सर।
6: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक,
5: बैक टू बैक।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1. It's hot.
10: Purani jeans.
11: With Jaru. Only on

0: मनोज कुमार जी बकायदा अपनी मम्मी पापा की परमिशन, उनके आशीर्वाद से दिल्ली से बॉम्बे आए थे 1956 में फिल्मों में काम करने के लिए। बॉम्बे शहर में उनके चाचा चाची भी रहते थे, जिनके घर में रहते थे और फिल्मों के लिए ट्राई करते थे। फाइनली उनको एक छोटा सा रोल मिला 1957 में। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने इसके बारे में क्या शेयर किया था।
1: पहली फिल्म में फैशन थी, 19 साल की उम्र में 90 साल का बूढ़ा बना के भिखारी एक्स्ट्रा आया था मैं। फिर सहारा फिल्म थी, उसमें मीना कुमारी जी के साथ 5-7 सीन मिले। फिर चांद फिल्म थी, बलराज सहनी साहब मीना कुमारी जी के साथ फिर सीन मिले। फिर रवेल साहब की नजर पड़ी, उन्होंने पसंद किया और फिल्म कांच की गुड़िया में हीरो लिया।
0: बस इसके बाद तो लड़के की गाड़ी निकल पड़ी। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans. Purani Jeans with Charu. Only on Mirchi. Only on Mirchi.
1: Mirchi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: कलाकार को तालियां भी मिलती हैं, गालियां भी मिलती हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इन दोनों पर मनोज कुमार जी कैसे रिएक्ट करते थे एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था, सुनिए।
1: कभी टीवी पे या किसी प्रोग्राम पे तारीफ हो, मुझे लगता मैं इस लायक नहीं है, फिर एक मिनट सोचता हूँ कि यार ये शब्द मेरी माँ जिंदा होती वो सुनती तो फिर तो ठीक था, अब माँ नहीं है, मेरे सुनने से क्या फायदा। आलोचना भी होती है, शर्माते कई जेनुइन करते हैं, कुछ जानबूझ के करते हैं, शर्माते वो भोंकते रहे, कारवां चलता रहे।
0: Well, how sweetly he mentioned his mother. वैसे उनके मदर फादर के गुजर जाने के बारे में जब उनसे एक बार बात की गई थी तब सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मुझे ये नहीं याद कि वो कौन से सन में गए, कौन सी डेट में गए, क्योंकि शायद मेरे सब कॉन्शियस ने माना नहीं। अब भी कभी कभार बेवकूफी से सिगरेट सुलगाने की कोशिश करता हूँ, देख लेता हूँ, माँ तो नहीं देख रही, पिताजी तो नहीं देख रहे।
0: How sweet is that? पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
4: हाँ, लगता ही है। He's the kind of director, as an actor, you have to really trust him. Because his ideas come from where you never understand. And if you start justifying it, जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि you know, तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी. But you have to trust him.
3: ये थी प्रियंका चोपड़ा talking about विशाल भारद्वाज on मिर्ची, It's hot.
1: Bollywood bol dal,
2: Bollywood Bollywood Bollywood bol dal, only on मिर्ची, It's hot.

0: बॉम्बे की फिल्मी दुनिया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई मैं अक्सर मुंबई को बॉम्बे बोलती हूँ, बिकॉज जिन दिनों की हम बात करते हैं तब उसे बॉम्बे ही कहा जाता था। तो बॉम्बे की फिल्मी दुनिया के बारे में एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए मनोज कुमार जी ने क्या कहा था।
1: बड़ा ह्यूमन प्रोफेशन है, बहुत इंसानियत है यहाँ, बहुत जज्बात है यहाँ, बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जो इस प्रोफेशन में है। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे हमने जो इस इंडस्ट्री में आ गए, दाल रोटी के साथ रहने को अच्छा घर, सफर के लिए अच्छी कारें मिल गई, लेकिन हमारे अंदाता तो हमारी जनता जनार्दन है, और जनता जनार्दन तभी तक आपका साथ देगी जब तक आप अच्छा काम करेंगे। वरना ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि यहाँ दादा साहब फालके भी रणजीत स्टूडियो के बाहर केदार शर्मा साहब से कहते हैं, मेरे पास काम नहीं, मुझे काम दिला दो। ये आयरनी है, इसमें जुल्म भी है।
0: क्या बात है, दर्द भी हम ही देंगे, दवा भी हम ही देंगे। फिलहाल हम आपको एक गाना देंगे यहाँ पे पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: मनोज कुमार जी, जिन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि काफी पेट्रियोटिक या सोशल इश्यूज वाली मूवीज इन्होंने बनाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और मनोज कुमार जी, ये जो भारत कुमार बने, इस पर सुनिए उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: भारत कुमार बनने की कोशिश नहीं की मैंने, मुझे भारत कुमार बनाया गया। उपकार में किसान की कहानी, किसान कहाँ बसता है, भारत कहाँ है, गांव में है, मैंने नाम भारत रख दिया। और हमारी देश की जनता बड़ी श्रद्धालु, उनको पसंद आ गया, उन्होंने, मैंने हरि कृष्ण से अपने आप को मनोज कुमार बनाया, उन्होंने मनोज कुमार को भारत कुमार बना दिया।
0: वेल, ये भारत कुमार का नेम टैग, इससे कितने कंफर्टेबल थे मनोज कुमार जी, सुनते हैं थोड़ी देर के बाद। राइट हियर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: मनोज कुमार जी को ये जो भारत कुमार का टाइटल दिया गया था, इससे ये कितने कंफर्टेबल थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: उसमें मुझे बहुत कठिनाइयाँ आई। बहुत साल पहले मैं परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। सिगरेट का तब शौक था, सिगरेट पिया। एक नौजवान लड़की आई और उसने मुझे डांटा, आप भारत होकर सिगरेट पी रहे हो, aren't you ashamed? जब सिगरेट पीता था तो छुप के की कोई फोटोग्राफ को फोटो।
0: वेल, इस टैग से मनोज कुमार जी में कुछ चेंजेस भी आए थे, जिनके बारे में करते हैं हम बात थोड़ी देर के बाद। राइट हियर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
4: खूब मिलेगा,
5: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन।
7: इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: मनोज कुमार जी ने एक पुराने इंटरव्यू में शेयर किया था कि एक बार किसी आउटिंग पे वो पब्लिकली स्मोक कर रहे थे तो किसी फैन ने आकर उनको डांट दिया कि आपको भारत कुमार कहा जाता है, आप ऐसा कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके बाद मनोज कुमार साहब अपने पब्लिक कंडक्ट में काफी कॉशियस हो गए। सुनिए उसे इंटरव्यू में, इसके आगे उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: उसके बाद जो फिल्में की उसमें मैंने हीरोइन को टच नहीं किया कि सीरियस बात कर रहा है तो ये चीप ना हो जाए। उन्होंने सुधारा मेरे को, बड़ा बोझ है इस नाम का मुझ पे, जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां डालता है। चलो भारत कुमार भी आशीर्वाद है, ईश्वर का, जनता का, बोझ भी आशीर्वाद। लेकिन जब लोग उस श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ मिलते हैं, मोहब्बत के साथ मिलते हैं तो इंसान को रुला देते हैं।
0: ओह हाउ स्वीट इज दैट। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Irani Jeans. Irani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: जिनीलिया देशमुख,
2: आर यू एन ऑनेस्ट क्रिटिक?
3: आई एम एन ऑनेस्ट क्रिटिक, बट आई एम आल्सो गुड फॉर योर ईगो.
2: अरे क्या बात है. मुझे वैलिडेट कर ले यार. हेलो जिनीलिया, आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट. क्वीन, वेयर इज योर क्राउन?
1: She's an honest critic, but a very funny person also. Ye thi Jinelia Deshmukh on Mirchi. It's hot. Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
4: Only on Mirchi. It's hot. Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
5: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
4: Relative se advice lo to kehte hain.
6: Kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga.
4: Isiliye main aapke paas aaya hoon promotion fund ke liye, jiske liye aap 50% equity le sakte ho.
7: Bhai kya kar raha tu? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070-7687.
9: मिर्ची स्टोरीज,
10: बस 24 घंटे ही रहेंगी.
11: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी.
12: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप. यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है.
13: मिर्ची, इट्स हॉट

0: जितना भी हासिल कर लो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक पुराने इंटरव्यू में मनोज कुमार साहब से पूछा गया था कि अपने फिल्मी करियर में उन्होंने पैसा शोहरत सब हासिल कर लिया, फिर भी ऐसा कुछ है जो रह गया? सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया।
1: मैं दिल्ली में अपनी चाची से कहता था मैं मुंबई जाऊंगा, एक्टर बनूंगा, सफेद बंगला होगा, सफेद गाड़ी होगी, सफेद कुर्ता होगा, सफेद धोती होगी और एक कमरे में बैठ के सितार बजाया करूंगा, बांसुरी बजा लेता था। जब सब कुछ हो गया तो चाची मुझे कहने लगी सितार बाकी रहेगी, बाकी जो सोचा था वो पूरा हो गया, सितार बजाना बाकी रह गया। अब लगता है ऊपर वाला मेरे सितार बजा रहा है। इधर देखे जो सोचा वो हुआ। नो रिग्रेट्स, लाइफ इज वंडरफुल, गॉड इज ग्रेट।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

89.6 Mirchi 1. It's hot.